100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार, आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

राम क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, सुमंगलम सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:01 हो रहे हैं और आपकी मित्र तरुश्री आप सभी के समक्ष उपस्थित है भक्ति भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम पुष्पांजलि लेकर। भगवान श्री गणेश विघ्न हरने वाले, वर देने वाले, देवताओं के प्रिय लंबोदर, सभी कलाओं के जानकार हैं, संसार का भला करने वाले, जिनका मुख गज के समान है, जो वेद और यज्ञ से सजे हैं, देवी पार्वती के पुत्र हैं, उन्हें नमस्कार है। हे गणनाथ, आपको हम नमस्कार करते हैं और अर्पित करते हैं भक्ति में पुष्पांजलि।

ओम नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं है, एक पंथ है। इसमें एक आत्मा मौजूद है। ये मंत्र आत्मा के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करता है। ओम नमः शिवाय सिर्फ आवाज नहीं, तरंग है, जीवन की तरंग। आप इसे एक औषधीय गीत भी कह सकते हैं, आप इसे आत्मक

अगीत भी नाम दे सकते हैं। इसे नाम दे, लेकिन नमः शिवाय से निकलने वाली ये मधुर आवाज किसी भी विशेषण के संबोधित नहीं होती। ये एक ऐसी पुकार है जो सीधे आत्मा से परमात्मा तो पहचानती है।

श्रोताओं, समय हो रहा है 6:21 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। ईश्वर को पाने के लिए आकाश को छूने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा झुकने की जरूरत है। जितना हम अहंकार से झुकते हैं उतना ही हम परमात्मा के करीब पहुंचेंगे। इसलिए अहंकार को त्यागना है और प्रभु भजन में अपना मन लीन करना है। तो आइए सुने ये एक मधुर भजन, भगवान श्री राम को याद करें, उनके चरित्र को याद करें।

श्रोताओं, दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, महत्व उसके लौ की है। वैसे ही प्रार्थना किसी भी भाषा में हो, महत्व उसके पीछे छुपी हुई श्रद्धा का है। आइए सुनते हैं एक और मधुर भजन प्रभु के चरणों में।

श्रोताओं, दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, महत्व उसके लौ की है। वैसे ही प्रार्थना किसी भी भाषा में हो, महत्व उसके पीछे छुपी हुई श्रद्धा का है। आइए सुनते हैं एक और मधुर भजन प्रभु के चरणों में अर्पित।

श्रोताओं, भक्ति हमें भागना नहीं बल्कि जागना सिखाती है। अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करने की सबसे बड़ी पूजा है। और इसी सकारात्मक सोच के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के भजन में लीन होते हैं, तो हमारी प्रार्थना सफल होती है। आइए एक और मधुर सुंदर भजन की प्रस्तुति में खो जाएं और एक बार राधे राधे का स्मरण करें।

हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स। आप कनेक्ट हो चुके हैं सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट एफएम रेनबो कानपुर के साथ। जी हाँ, जिसे आप सुनते हैं 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। वैसे दोस्तों, मुझे तो आपने मेरी आवाज सुनकर पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, आज के गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम की इस जर्नी पर आपके साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौसर। सो इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में आपका हार्टली वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि। तदनुसार 1 जुलाई 2026। और गुड विशेज है आपके लिए कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और खुशनुमा हो। और देखिए ना, धीरे धीरे दिन भी चढ़ने ही लगा है।

जी हाँ, दिन तो चढ़ेगा ही, जिसका जो काम है वो अपना काम करेगा ही, सूरज निकलेगा और दिन चढ़ेगा। और ऐसे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो होते हैं ना, वो सच में हमारा दिन बना देते हैं, क्यों, सही बोली ना मैं? और इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बिकॉज योर मॉर्निंग जस्ट गॉट बेटर विद 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। तो डियर लिसनर्स, अब तक तो आप अपनी नींद को फुल्ली टाटा बाय बाय बोल ही चुके होंगे, तो बस आप तैयार हो जाइए ये सुनने के लिए कि आज रेनबो कानपुर के स्टूडियो से कौन कौन से प्रोग्राम्स आप इंजॉय करेंगे। You know better कि अभी आप enjoy कर रहे हैं Good Morning कानपुर प्रोग्राम, और इसके बाद 8:30 पर सजेगी सुरों की पुरानी महफिल, जिसमें बहुत ही खूबसूरत कुछ ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग्स आपके लिए लेकर आऊंगी मैं। खत्म होगा आपका इंतजार उस प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है रस बहार, और इसे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी सुबह 9 बजे। आज है नेशनल डॉक्टर्स डे, तो आज की थीम है थैंक यू डॉक्टर। और 9:45 पर विविधा के तहत आज माहौल थोड़ा सा भक्तिमय होगा, क्योंकि अर्चना प्रोग्राम आप सुनेंगे। इसके बाद 11 बजे आप सुनिएगा और जुड़िएगा भी हमनवा प्रोग्राम्स में। इसमें आज हमारे साथ मेरी हमनवा होंगी आरजे आरती। इसके बाद रेनबो कानपुर से एक बार फिर आप कनेक्ट होंगे दिन में 3 बजे से 5 बजे तक।

जिसमें 3 बजे होगा म्यूजिक आर प्रोग्राम और 4 से 5 बजे तक आपकी ईमेल बेस्ड प्रोग्राम आपकी पसंद को आप करेंगे इंजॉय। फिलहाल अभी आपको अपना साथी बनाकर एंटरटेन करने आ रहा है ये सॉन्ग।

जी हाँ, हर पल आपका साथ निभाता है, आपका मनोरंजन करता है, आपका सच्चा साथी बनकर। अरे जनाब, समझी नहीं क्या? जी हाँ, ये और कोई नहीं, FM रेनबो जैसा साथी है आपका। तो यूं ही हमारे साथ बने रहिए 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। आज मैं हूँ आपके साथ RJ कौसर। फिलहाल टाइम है आज के विचार यानी मॉर्निंग थॉट का, और आज का सुविचार है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, यानी कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए, यानी चमकने के लिए तपना पड़ता है। तो नेक्स्ट सॉन्ग भी कुछ ऐसा ही प्ले कर रही हूँ जिसमें सूरज की गर्माहट और जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास है। सुनिए ये सॉन्ग।

Hey guys, you are listening 102.2 FM Rainbow Kanpur with your RJ Kausar. Ongoing program है Good Morning Kanpur and now the time is social media पर blink करती हुई कुछ important tweets का. तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सैंडल पर यह जानकारी दी है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राज्य बन गया है और इससे चीनी उद्योग को नई मजबूती मिली है और विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है. साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए पहली बार ईपीएफओ में पंजीकरण आवश्यक है. योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन 1,00,000 रुपए तक है तथा जिनका आधार से जुड़ा बैंक खाता एक्टिव है.

एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन यूपी द्वारा एक्स हैंडल पर कुछ बातों के लिए सतर्कता बरतने को कहा गया है कि तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द तथा त्वचा पर रैशेस जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत सतर्क हो जाएं। डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर जनित बीमारियां समय पर पहचान लेने से और डॉक्टर की सलाह ले लेने से गंभीर परिणाम से बच सकते हैं और गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से बचाव में ये सहायक हो सकता है। और फिलहाल तो आपको एंटरटेन करने के लिए ये सॉन्ग भी सहायक हो सकता है।

और गाइस चलिए अब जरा नजर डाल लेते हैं अतीत के आईने पर कि आखिर क्यों खास है आज की तारीख इतिहास के पन्नों में। दोस्तों आज यानी 1 जुलाई की इतनी सारी खासियतें हैं, सोच रही हूँ कि क्या क्या आपको बताऊं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। भारत के महान चिकित्सक और पश्चिमी बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। और साथ ही आज ही के दिन यानी 1 जुलाई 1949 को चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में आज चार्टर्ड अकाउंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही आज लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल जोक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस आज खुश रहिए। और पहले इसी हैप्पीनेस के साथ सुन लेते हैं एक सॉन्ग, और इस सॉन्ग के बाद आती हूँ कुछ और खासियत 1 जुलाई की बताती हूँ।

तो डियर लिसनर्स, वंस अगेन आ जाते हैं हम 1 जुलाई की इम्पोर्टेंस पर। तो 1862 में पहली बार कोलकाता और आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई। 2017 में भारत में अब तक के सबसे बड़े कर सुधार जीएसटी को आज ही के दिन पूरे देश में लागू किया गया था। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया आज ही के दिन। एंड 1997 में अंतरिक्ष परी कही जाने वाली कल्पना चावला पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने कोलंबिया स्पेस शटल से अपनी उड़ान भरी। इसके अलावा कई ग्रेट पर्सनालिटीज ने भी आज के दिन जन्म लिया था, जिनमें परमवीर चक्र विजेता भारतीय सैनिक अब्दुल हमीद, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक एवं संगीतकार उस्ताद राशिद खान के नाम हैं। तो चलिए सुनवाते हैं आपको उस्ताद राशिद खान का ही गाया ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, एंड आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये सॉन्ग।

Hey guys, you are listening FM Rainbow Kanpur only on 102.2 FM Rainbow Kanpur with your RJ Kausar. Ongoing program, good morning Kanpur, and now it's time for national and international updates. जनरल धीरज सेठ ने संभाला देश के 31st सेना प्रमुख का कार्यभार। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि अंतिम चरण में है भारत अमेरिका व्यापार समझौता। MBBS MD की बढ़ेंगी सीटें, राज्यों से मांगे गए प्रस्ताव, यूपी ने मांगा बड़ा हेल्थ पैकेज। मरीजों तक पहुंचने वाले टीके दवा की निगरानी के लिए बना नया नियम, अलग अलग टीकों और दवाओं पर QR या बारकोड लगाना अब होगा अनिवार्य। और देश में मौसम की पड़ रही दोहरी मार, कई राज्यों में बारिश और बाढ़, जबकि उत्तर पश्चिम में गर्मी का सितम कर रहा बेहाल।

You are listening 102.2 FM Rainbow Kanpur with your RG Kausar. एंड दोस्तों गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब अपने रुख को थोड़ा सा टर्न करते हैं और ये टर्न जाएगा अपने शहर प्रदेश और आसपास की कुछ खास अपडेट्स की ओर। तो 5 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों के लिए इम्पोर्टेंट एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से केवल अधिकृत टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से यात्रा करने और सभी दस्तावेज मिलने के बाद ही घर से रवाना होने की अपील की है। तो बस इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा, अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो। वैसे दोस्तों भारत का आम बहुत फेमस है और अब समुद्री रास्ते से विदेशों में जाएगा भारत का ये आम, क्योंकि भाड़ा कम होने से निर्यात को मिलेगी रफ्तार और बागवानों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई यानी कि आज से ग्रामीण विकास की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब ग्राम पंचायतों को उनके विकास स्तर अच्छी माध्यम और पिछड़ी 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। इसी वर्गीकरण के अनुसार पंचायतों को बजट मिलेगा। नई व्यवस्था में मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक रोजगार देने और मजदूरी के भुगतान में देरी होने पर 0.5% मुआवजा देने का प्रावधान है। और 29 जून को हर हर महादेव के जय घोष के बीच अमरनाथ की पहली पूजा हो चुकी है और अब 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। तो चलिए इस मौके पर सुन लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा ये सॉन्ग।

तो गाइस एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी एक फील गुड कराने वाली खबर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नवाचारों से बागवानी क्षेत्र को 354 करोड़ का आर्थिक लाभ हुआ है। वहीं हल्दी की प्रगित किस्म ने उत्पादन बढ़ाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है और 354 करोड़ का अतिरिक्त लाभ किसानों तक पहुंचाने का भी काम किया है। और अब इन सबके बाद लगा देते हैं बॉलीवुड का भी एक तड़का, वो ये कि इस वीक ओटीटी पर होगी मनोरंजन की बरसात। एनोला एक्स 3 और एली आज होगी रिलीज। सुपर सुबू कॉमेडी सीरीज कल 2 जुलाई को, प्रीतम एंड पेड्रो 3 जुलाई को रिलीज होगी। और इस एंटरटेनिंग न्यूज के साथ ऐसा ही एक सॉन्ग प्ले कर दूं तो क्या ही मस्त कॉम्बिनेशन होगा ना।

डियर लिसनर्स, यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम विद योर आरजे कौसर। तो जहां पसीना बनता है पहचान, मेहनत लिखती है जीत, तो पेश है अब खेल जगत की खबरों की ये सीरीज। तो बीसीसीआई ने सितंबर 2026 में जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें हरमनप्रीत कौर कप्तान और स्मृति मंदाना

सुहाना उप कप्तान होंगी। कानपुर शहर में पहली बार आयोजित होने वाली खो खो प्रीमियर लीग के ट्रायल 5 जुलाई से हर सहाय इंटर कॉलेज में होंगे। ट्रायल के आधार पर ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि यूपी T20 लीग की तैयारियां उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चल रही हैं और इसके चौथे सीजन की मेजबानी कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम करेगा। जी हाँ, जिसकी शुरुआत अगस्त में होने वाली है। और चलिए अब आपको बता देते हैं मौसम की जानकारी, मौसम के हालचाल। तो 5 दिन की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया है कल से, और इससे शहर में मौसम का मिजाज जो है ना वो बदल गया है। सुबह से ही कल शहर में घने बादल छाए रहे और रुक रुक कर फुहारें पड़ती रहीं, और मानसून ने बस हीट डोम जैसी स्थिति से राहत दिला दी है हमारे शहरवासियों को। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के कारण गरज और बिजली तूफान आदि और तेज़ सतही हवाओं के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। फिलहाल आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो ये था आज के मौसम का हाल चाल, क्या होने वाला है और क्या कल रहा। फिलहाल तो एक सॉन्ग आपके लिए।

तो गाइस चलते चलते बस इतना और कहूंगी और आपसे यही चाहूंगी कि आपकी हर सुबह यूं ही मुस्कुराती रहे, जिसके साथ आप भी मुस्कुराते रहें, हर दिन नई उम्मीदों की धूप लेकर आए और दिल में खुशियों की हल्की हल्की बारिश हमेशा होती रहे। आज के गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम से मुझे अब दीजिए इजाज़त, मुझे यानी अपनी रेडियो हम सफ़र कौसर को, और बस इसके बाद आपको लेकर चलूंगी अपने दिल्ली केंद्र, देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के तरवर इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
4: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
5: उत्तराखंड सरकार ने

0: शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
0: सभी मदरसों को UDIS यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर। इस वक्त आपके लिए लेकर आई हूं सुरों का सुहाना सफर, जिसका नाम है सुरों की पुरानी महफिल। जी हाँ, जिसे सुनकर खेल जाएंगे आपके दिल। इस यादों के संदूक में हैं पुराने फिल्मी गीतों के अनमोल मोती, वो गीत जिनकी धुने, जिनकी रिदम आज भी गुनगुनाने और थिरकने पर मजबूर कर देती है। तो गाइज, आज ऐसे ही कुछ दशक पहले के थिरकते हुए गीत आपके लिए लेकर आई हूँ मैं इस प्रोग्राम में। और पहला गीत जब आप सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आज किस तरह के गीत आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो बस सुनिए ये सॉन्ग।

ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी ये फिल्म थी डॉन, आप सभी ने देखी होगी। और इसमें जो आवाज़ आप सुन रहे थे, ये आशा भोसले की थी। इस गीत को लिखा था एनडी वर ने और ये खूबसूरत संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने।

और ऐसा ही एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत अब आपके लिए लेकर आ रही हूँ। शान फिल्म से ही इसे मैंने लिया है और इसमें आवाज़ें हैं आशा भोसले, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और म्यूज़िक है RD बर्मन का।

जी हाँ बिल्कुल, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। अगर प्यार करो तो शान से करो, और शान से जियो और शान से मरो। शान फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत। और ये सभी खूबसूरत नगमे आप सुन रहे हैं सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में, जो कि इस वक्त चल रहा है एफएम रेनबो कानपुर के स्टूडियो से। और इसे प्रेजेंट कर रही हूँ आज मैं आपकी अपनी रेडियो हमसफर कौसर। तो नमक हलाल फिल्म के इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, गीत लिखा अनजान ने, और संगीत है बप्पी लहरी का।

0: 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आप इस वक्त सुन रहे हैं सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में नगमे अभी और भी हैं, बड़े ही खूबसूरत, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि पहले सुनिए ये संदेश और फिर से हम लेकर आते हैं कुछ और नगमे आपके लिए।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
2: पहला नशा, पहला खुमार।
3: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

और सुरों की पुरानी महफिल में अब बारी है शोले फिल्म के एक बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग की, जिसे गाया है आर डी बर्मन ने और संगीत से भी आर डी बर्मन ने ही सजाया है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम तो आपको पता ही है, मैंने बताया अभी, शोले। तो बस सुनिए ये

जी हाँ, बहुत ही मशहूर फिल्म हुई थी ये शोले, और इसका ये गाना भी बहुत चला था, महबूबा महबूबा। आज मैंने इसे आपको सुनवाकर एक बार फिर आपकी वही शोले फिल्म की यादें ताज़ा कर दी होगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम, और अब जांबाज फिल्म का ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। सपना मुखर्जी की आवाज़ है, इंदिवर के गीत को संगीत में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

बिल्कुल, जिंदगी में प्यार दो और प्यार लो और खुशियां बांटो। और इसी खुशी के साथ अब मुझे सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। आपसे मिलती हूँ बस अभी रस बहार प्रोग्राम को लेकर। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हेलो डियर लिसनर्स, यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर एंड मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर फिर एक बार। जी हां, अपने साथ लाई हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम रस बहार। सुबह की ताजगी, चाय की खुशबू, साथ ही सुबह का ये मौसम और इन सब के साथ ही अगर साथ अच्छी हो सेहत तो फिर क्या ही बात है। और बस इसीलिए आज का ये प्रोग्राम डेडिकेट है उन लोगों के नाम जिनकी एक मुस्कान कई घरों की खुशियां वापस ला देती है। जी हाँ दोस्तों, आज है डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। वो डॉक्टर्स जो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने और बचाने में लगे रहते हैं। तो बस आज उन्हीं को कहना है कि आज की जिंदगी बहुत सारी आपसे उम्मीदें लगाए बैठी हैं, आशाएं लगाए बैठी हैं, सारी उम्मीदें और सारी आशाएं सब आप डॉक्टर्स से ही लगी हैं।

जी हाँ, जिनसे हमें है ज़िंदगी की आशा और ज़िंदगी की उम्मीद, क्योंकि हमारी वो एक उम्मीद होते हैं जिनसे हमें ये आशा होती है कि वो हमारी ज़िंदगी को बचा लेंगे। तो आज उन्हीं को थैंक यू डॉक्टर कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। आज के दिन यानी 1 जुलाई को हर साल इस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के लिए, और ये दिन भारत रत्न विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है, जो कि एक बेहतरीन डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवी और पश्चिम बंगाल के सेकेंड चीफ मिनिस्टर भी रहे। और दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि उनका जन्म भी 1 जुलाई को हुआ और उनकी डेथ भी 1 जुलाई को ही हुई। इसीलिए इस तारीख की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा हो जाती है और ये दिन और भी खास हो जाता है, और हमें याद दिलाता है कि डॉक्टर्स सिर्फ एक जॉब नहीं करते, बल्कि सेवा और समर्पण का दूसरा नाम है डॉक्टर। इसीलिए उन्हें धरती का भगवान कहा जाता है।

0: जी हाँ बिल्कुल, हर तरफ हर जगह है उसी का नूर, और जिसका ये नूर है उसका नाम है रब, और वो ईश्वर, वो भगवान, उसी ने रूप लिया है धरती पर एक डॉक्टर के रूप में, और इसीलिए हम डॉक्टर्स को कहते हैं धरती का भगवान। वैसे ज़रा सोचिए और गौर करिए इस बात पर कि जब कोई अपना बीमार पड़ जाता है तो सबसे पहले किसका नाम याद आता है? ऑब्वियसली डॉक्टर का, है ना? क्योंकि हमें भरोसा होता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। कई बार दवा असर बाद में करती है, लेकिन डॉक्टर की एक प्यारी सी स्माइल के साथ दो भरोसा देने वाले बोल पहले ही हिम्मत दे देते हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं जहां उम्मीद खत्म होने लगे वहां एक अच्छा डॉक्टर उम्मीद की नई शुरुआत कर देता है, और शायद यही इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। तो चलिए सुन लेते हैं एक डॉक्टर के विचार कि आज के दिन उनका क्या कहना है।
1: मैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर आप सभी को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मैं आकाशवाणी का धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि कुछ मंच हैं जो डॉक्टर्स को बहुत सम्मान देते हैं, उनमें से आकाशवाणी एक है। और डॉक्टर्स डे के अवसर पर आप मेरी आप सब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले तो अपने लेवल पर ही रखें। उसके लिए आपको हेल्दी एवं न्यूट्रिशियस डाइट का चयन करना पड़ेगा, और आप प्रतिज्ञा करें कि आपको दिन में कम से कम एक घंटा अपने लिए देना है, और उसमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आप योगा करें, चाहे जुम्बा करें, चाहे एरोबिक्स करें, और चाहे जिम ज्वाइन करें, चाहे आउटडोर एक्टिविटी करें कोई भी, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तभी हमारा देश आगे उन्नति कर सकेगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।

जी हाँ, जिंदगी का पता ही तो देते हैं डॉक्टर, एक नई जिंदगी से मुलाकात कराते हैं हमारी। वैसे अक्सर हम डॉक्टर को सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक डॉक्टर की जिंदगी कैसी होती होगी भला? कई घंटों की ड्यूटी, रात में अचानक आने वाली इमरजेंसी, अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम अपने पेशेंट्स के साथ बिताना और फिर भी फेस पर एक प्यारी सी स्माइल बनाए रखना। जी हाँ, शायद इसीलिए ही कहा जाता है कि डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते बल्कि अपने पेशेंट्स को और डेडिकेशन से लोगों का हौसला भी बढ़ाते हैं। ये प्रोफेशन जितने सम्मान का है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी का भी है, और यही धरती के भगवान हमारी जिंदगी में रोशनी लाते हैं, उम्मीदें लाते हैं और साथ में भरते हैं जीने की उमंग।

0: जी हाँ, एक बार फिर से हमें जिंदगी की रोशनी ही तो दिखाते हैं ये डॉक्टर, जिन्हें हम कहते हैं धरती का भगवान। और आज का दिन है ये कहने का कि हम उन्हें बोले थैंक यू डॉक्टर। दोस्तों, एक और बात आपको बताती हूँ कि डॉक्टर्स तभी अपना काम पूरी तरीके से कर पाते हैं जब पेशेंट भी उनका पूरी तरीके से साथ दें। कई बार हम बिना डॉक्टर की एडवाइस लिए दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं या फिर इंटरनेट पर पढ़कर खुद ही इलाज करने लगते हैं। लेकिन सेहत के मामले में अनुमान नहीं, सही सलाह जरूरी होती है। इसलिए अपने डॉक्टर पर भरोसा रखिए और जो भी वो बताएं उसे पूरी तरह से फॉलो करिए। और यही जल्दी से स्वस्थ होने का एक इजी वे भी है। तो चलिए एक और डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं आज के इस दिवस पर।
1: मैं डॉक्टर फहीम अंसारी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, सभी कानपुर वासियों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। आइए प्रण लें कि हम धूम्रपान और मदिरापान को त्याग देंगे, दूर रहेंगे उससे, यातायात नियमों का पालन करेंगे, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाकर ही अपनी गाड़ी चलाएंगे, स्वस्थ आहार लेंगे, जंक फूड से बचेंगे, अच्छी नींद लेंगे, जल्दी सोने की आदत डालेंगे और सुबह उठकर व्यायाम करेंगे, हल्की फुल्की वॉक करेंगे, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ बने और हम अपने समाज को एक स्वस्थ और विकसित दिशा की तरफ अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत।

रेज बहार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर के स्टूडियो से। जी हाँ, नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर आज जो थीम है उसका नाम है थैंक यू डॉक्टर। इस प्रोग्राम के साथ आज मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर। दोस्तों, आज का दिन डॉक्टर्स को थैंक यू कहने का तो है ही, साथ ही खुद से एक वादा करने का भी है, और वो वादा ये है कि थोड़ा टाइम अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें देना है। रोज कुछ देर टहलना है, संतुलित खाना खाना है, भरपूर पानी पीना है, अच्छी नींद लेना है और रूटीन हेल्थ चेकअप तो कराना ही है। ये छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना, वो आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि लोग कम बीमार हों और पूरी तरह हेल्दी रहें। और जब आप हेल्दी रहेंगे तो डॉक्टर्स के लिए कुछ ऐसा तो जरूर बोलना चाहेंगे।

जी हाँ, जब हमें डॉक्टर्स का साथ मिलता है ना, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो बस यही लगता है कि जब तू है तो मुझे और क्या चाहिए, मन से बस यही निकलता है। और जब हम ठीक हो जाते हैं तो मन से ये भी निकलता है कि थैंक यू डॉक्टर। वैसे अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में या जान पहचान में कोई डॉक्टर है तो आज उन्हें एक फोन, एक मैसेज या एक छोटा सा थैंक यू जरूर कहिए। यकीन मानिए, किसी भी इंसान के लिए उसके काम की सच्ची सराहना सबसे बड़ा पुरस्कार होती है। लाइफ बचाने का काम आसान नहीं होता, लेकिन डॉक्टर एवरीडे इस चैलेंज को मुस्कुराकर एक्सेप्ट करते हैं। हमें तो रब का भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने दुनिया में खुद को एक डॉक्टर के रूप में हम लोगों के लिए भेज दिया। तो बस ऐसे में मुझे एक सॉन्ग याद आ गया, शुक्रानल्लाह।

जी हाँ, शुक्राना अल्लाह कहने का तो मन करता है, क्योंकि उस रब ने भेजा है डॉक्टर को अपने रूप में हम सब की सेवा करने के लिए, हमें एक नई जिंदगी देने के लिए। ज़रा सोचिए, ज़रा गौर करिए कि आज अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, अपने वर्क पर जा पा रहे हैं, अपनी फैमिली से हंस बोल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर की सलाह, मेहनत या देखभाल भी उस मुस्कान का एक पार्ट ज़रूर होगी। इसलिए आज का दिन सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं बल्कि उस भरोसे का भी है जो मरीज और डॉक्टर्स के बीच बना रहता है, और यही भरोसा ट्रीटमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जी हाँ, जब भरोसा होता है तो ट्रीटमेंट और भी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्तों, देश के सभी डॉक्टर्स को दिल से सलाम और शुभकामनाओं के साथ देते हैं हम सब मिलकर उन्हें शाबाशियां।

आज का दिन ही है इन धरती के भगवान को शाबाशियां देने का और कहने का थैंक यू डॉक्टर। और अब प्रोग्राम के लास्ट में इन्हीं डॉक्टर्स के लिए बोलना चाहूंगी कि जिनको हम धरती के भगवान कहते हैं, मनुष्य का एक नया स्वरूप है, डॉक्टर तो भगवान का रूप है। हम सभी का जीवन बचाता है, नए जीवन की ओर बढ़ाता है। बीमारी हम सभी के जीवन का है अंधेरा, और हम सभी का जीवन डॉक्टर के बिना है अधूरा। बरसात में उगती हुई धूप, डॉक्टर तो है भगवान का रूप, डॉक्टर तो है भगवान का रूप। थैंक यू डॉक्टर, जिनकी वजह से हम ये बोल सकते हैं।

तो डियर लिसनर्स, थैंक यू डॉक्टर बोलते हुए आज के गाने तराने प्रोग्राम को मैं आरजे कौसर यहीं पर करती हूँ वाइंड अप, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम विविधा के साथ, जिसमें आज माहौल होगा भक्तिमयी।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है विविधा के तहत अर्चना। आइए प्रभु के स्मरण से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और भक्ति के इन मधुर स्वरों में मन को शांति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भर लें। तो प्रस्तुत है आज का ये पहला भजन जिसे गाया है शायद

0: हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाकर रखें। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं ये अगला भजन जिसे गाया है अनूप जलोटा ने।
1: जरा तो बता दो भगवान, लगी ये कैसी लगा रहे हो।

जी हाँ, प्रभु को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रभु तो हमारे मन में है, बस जरूरत है तो महसूस करने की। जब मन श्रद्धा से भर जाता है तो हर प्रार्थना अपने आप एक सुंदर आराधना बन जाती है। और इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अब राहुल वैद्य का गाया ये भजन।

नमस्कार, 10 बज रहे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी TET 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रही यूपी TET की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने यूपी TET परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज तड़के करीब 4:30 बजे स्लीपर बस और कार की जोरदार टक्कर में कार सवार 2 बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बस हरियाणा से बिहार जबकि कार आगरा से लखनऊ आ रही थी। दोनों गाड़ियां एक ही लेन में थी। तेज रफ्तार बस कार को टक्कर मारते हुए एक्सप्रेसवे से नीचे गिरकर पलट गई। वहीं कार करीब 20 फीट तक घिसटती चली गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और CHC बांगरमऊ भेजा। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार भी बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। प्रवेश के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। उन्होंने बताया कि 30 जून को मॉनसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया है। आने वाले 3 दिनों में पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, खासकर विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब 1 दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
3: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
4: भाई अब मैच का क्या होगा,
3: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
5: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
6: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
5: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।

श्रोता पंचो राम राम प्रणाम नमस्कार केम छो वड़कम खम्बा गढ़ी। माई बहिन नौजवान लड़कन बच्चन सभीन जानत मानत है कि अपन देश केरी माटी संस्कृति के कोनो जवाब नहीं है। रहियो आप चाहे कहूं मुला जियरा जुड़ाए रहते है अपन घरे गांव संगे है कि नहीं। हमहू जनती हैं कि रेडियो त्योहार बहुत प्रिय साथी। हाँ तो यू आज जो त्योहार प्रिय साथी है रेडियो इम आज ई बखत आज बुधवार के दिन हम यानी कि रत्ना शुक्ला आपकी रेडियो साथी लेके आई गई हैं कार्यक्रम सुगंध माटी की। और हम तो कहत हैं आपन माटी के गीतन माँ जौन रस है ओ कतहूँ और कहाँ। अब जैसे देखो यू बतावत ही कि बहनी की कौन कौन महीना में कौन कौन चीज होवत है, चलो सुना जाए।

तो सुनो पंचो, कि कौन कौन बतकही बताएं ये कि सावन मास में का हुआ था, आषाढ़ मास में का हुआ था, कौन कौन खूबी है कौन कौन मास की। और यह तो है हमारे माटी की ताकत। बाजी बाजी जौन सुकून ही लोगीतन में मिलत है ना, वो और कतहू ना ही मिलत है। जैसे कि हमारे जीवरा कहते तो का तुम्हारो जीवरा ऐसे ही कहते, तो चलो ये वो गीत में देखो का सुनावा थी।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सपने बड़े हैं,
5: स्टाइल अलग है,
4: तो ये शो है आपके लिए।
5: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
4: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
5: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
4: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
4: श्रोता पंचर, आप सभी को बता दें कार्यक्रम चलत है सुगंध माटी की 100.7 FM रेनबो पर, जय का कहते हैं धड़कन लखनऊ की। आई मैं हम यानी बोले तो रत्ना शुक्ला आपके साथ हैं, आप हो ना हमारे साथ। और का कही कि देखो अम्मा का बतावत रही कि जोने आषाढ़ शुरू हुई गवा है, तो कहत रही कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़ जो चूक गया बाजार। 13 कार्तिक 3 आषाढ़ जो चूक गया बाजार। आषाढ़ के शुरुआती दिन बिजाई बुवाई खातिर विशेष होवत है। मक्का बाजरा सोयाबीन अरहर उड़द मूंग की बुवाई कर सकत हो आप और ख्यातन में सब्जी तमाम बोय सकत हो। अरे यू सब हमरी अम्मा तो हमते बतावत रही और तुम लोगों का भी हम याद दिला दी है, तो बस का करे के कई लोग तो हमारे जितने संगी साथी हैं, कई किसान हैं, कते बहन है, कितनी बहनी है, यू सब हो सकत है कि ख्यातन में जुटे हुए अपन अपन काम कर रहे थे, बुआई रुपाई कर रहे थे है कि नहीं। और अब हमका एक गवने याद आ रही है जो जिंदगी से जुड़ी कई चीजन का ये गीतन में हम सुन सकते हैं, तो चलो यू गीत हम तुम तक पहुंचावत है कार्यक्रम सुगंध माटी की और तुम्हारे लोगों की बात कही भी हम सुनब काहे से मेल के जरिए, वही के बारे में बाद में बताइए, लेकिन पहले यू गीत सुन ले।

रे रे रे रे अरे बगिया में भंवरा भी

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
4: सात दशमलव सात FM रेनबो पर कल चलत है कार्यक्रम सुगंध माटी की। नाम कत्ता नहीं है ना, तुमका लागत है कि नहीं, सुगंध माटी की। हमारे संस्कृति में पारंपरिक गीत कत्ते कत्ते सुंदर सुंदर हैं। प्रकृति की गोद में अपन हरी हरियाली की बात अगर करें तो हर गीत की मधुरता, शब्द रचना अत्ता नीक नीक सुशोभित होते हैं कि का कहें। और सुशोभित होने के जहां तक हम बात करी थे ना, तो ये जो पहाड़ की जो नीक नीक पगडंडियाँ होते हैं, वहाँ बहुत शुद्ध वायु जलवायु सब होते हैं, उसमें पहाड़ी बहुत ही नीक नीक गीत अगर हम आपका सुनवाए दे तो का हुई मन का नीक लागी ना, चंगा लागी ना। तो चलो यू गीत हम आप तक पहुंचाए रही ने।

और अब तनिक हम कहे के चाह रही का कहे के चाह रही जा बताई दी। आषाढ़ महीनवा मा हमार लोगन के संस्कृति मा कुछ बरत त्योहार है ये सब पड़त है उन्हों के नाम हम जीव हमार चाह रहे कि तो तोरे लोग संग हम बताई दे तुम सबका बताए के चाहे थे हम। देखा आषाढ़ सोमवती अमावस्या पड़त है 13 जुलाई को होवे वाली है वो के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा आवे वाली है वही के बाद आषाढ़ी एकादशी भी आवे वाली है 25 जुलाई का यू मनावा जाई। और ओकरे बाद गुरु पूर्णिमा या कही की व्यास पूजा भी आवे वाली है ये हुई जुलाई महीना में। तो इन सब चीजें आषाढ़ में जौन जौन व्रत और त्योहार पड़े वाले हैं उनके हम नाम आप सब लोगों का बताए दिए लेकिन आप लोगों का भी बताए कि है कि यू कार्यक्रम सुगंध माटी के आप सब लोगों का कैसन लग रहा है। आप सब जाना तो कि आप कहाँ कौन पते पे हमको बता सकते हो कहाँ चिट्ठी पाती अपन भेज सकते हो। अरे वही पता मेल आईडी जेका कहते हैं कि fmakashwani.lucknow@gmail.com पर आप आहू बता सकते हो कि सुगंध माटी की कार्यक्रम में जौन कछु तुम बत कही कहे के चाह रहे हो ये कार्यक्रम में मेल भेज के हमको बता दो। तो आपके रेडियो साथी रत्ना शुक्ला कहते हैं कि उनके पहले यू बहुत ही धमाकेदार गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेजते हैं यू आवा गवा।

जितने श्रोता पंचन सुनत हैं कार्यक्रम सुगंध माटी की, और एक बता दें कि बखत हुई चला है 10:42 और यू बखत हम आप लोगों के, जैसे हम देखा कंप्यूटर डब्बा में बहुत सारे मेल आए गए हैं, यानी कि अपन चिट्ठी पाती आप भेज दिए हो तो वही का हम शामिल करब। लेकिन उनके पहले हम एक सरोता वाला गाना जो हमारी दादी गावत रही वो हमका याद आ गवा, तो हम सोचे कि वो गाना गवने तुम तक पहुँचा दे, उसके बाद हम मेल शामिल करब। ठीक है, तो बने रहो सुनत रहो कार्यक्रम सुगंध माटी की।

और भाई मौसम के मजा सबको जो है कोई लेवत रहो। और एक के साथ साथ बहुत सारी मेल आई गई हमें लिए लगे चिट्ठी पाती आ गई, तो चलो सबका शामिल करा जाए। और कौन कौन लिखी ने, नागरकोहा जिला छत्तीसगढ़ से कौन लिखी ने, झग्गर राम साहू जी, ये तो गीत के फरमाइश कर रहे हैं, तो यू कार्यक्रम है तो गीत के फरमाइश से पूरी हो ही नहीं सकते है। प्रवीण हरगोने जी भी गीत के फरमाइश कर दी ने, वही के भी कार्यक्रम में कोनो काम नहीं है, ये कार्यक्रम में रामराज जी का लिखे ने, ये लिखे ने श्री गणेशाय नमो सुगंध माटी की जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु राम शंकर राम चरण शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज मधु बजरंगी काका। सबसे पहले हमारी तरफ से रत्ना शुक्ला बिटिया को प्यार भरा नमस्कार, आप हूँ के बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत प्रणाम। और हमका देखो आशीर्वाद मिल गवा है किनका, रामराज भाई के। और का लिखे ने, आप जो गाना सुनवावत तो बहुत ही सुपर हिट है, सुगंध माटी की कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा थे, आज बहिनी नीना सोनकर जी की याद आ गई और उनके हमार नमस्कार पहुंचा दियो, तो बहुत बहुत नमस्कार उनका हम बोलब नीना बहिनी के, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पाती भेजो मेल करो हमको ये कार्यक्रम में। और उसके बाद हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी का लिखिन है, बड़ी बहन जी का सादर प्रणाम, पिंकू सोनी मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ, सुगंध माटी के कार्यक्रम में हमें अपनी जमीन से जुड़ाव का एहसास हो जाता है और गाने तो लाजवाब ही हैं जो किसी भी प्रोग्राम में सुनने को नहीं मिलते, सो धन्यवाद लिखा इन्होंने। और लिखा है कि हमारे कुछ रेडियो दोस्त हैं कुलदीप नारायण आकाश बहन गुलफशा सिद्दीकी और सभी लिसनर्स को बहुत बहुत इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, ब्रह्मेश सोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वकील अहमद लिखिन है कि आवाज अच्छी लगा थे सुगंध माटी के कार्यक्रम हूँ, अच्छा लगा था है और लोकगीत बज रहे हैं, बारिश होने से मौसम अच्छा हुई गवा है। वकील अहमद मंसूरी कटका हथौरी जिला सीतापुर साहिबा अंसारी शाजी अंसारी शमा परवीन और रिंकी परवीन पिंक, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करे खातिन वकील अहमद जी। और किन किन का मेल हम शामिल करी, गुलफशाह लिख दीन है कि गुड मॉर्निंग रत्ना मैम, और संडीला से लिखी है यो कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, और शाजिया अंसारी शमा अंसारी सबके नाम भी लिखी है, तो हम सब मिलके सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलफशाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सुनत रहो जुड़त रहो 100.7 FM रेनबो से। अरुण कुमार कुशवाहा जी लिखे ने घमोइया हरदोई से, रत्ना जी आपको पार भरा नमस्कार, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मकान की चुनाई होवत है, अच्छा चुनाई हो रही है, और आपका गाना सुन के हमारे मिस्त्री राधेश्याम जी झूम उठे हैं तो राधेश्याम भैया और जितने लोग सुना थे वो सबके बहुत बहुत धन्यवाद है, कार्यक्रम सुगंध माटी के है ही ऐसे कार्यक्रम जो केवल केवल लेके आवत है 100.7 FM रेनबो पर, यू कार्यक्रम आवत है बुधवार और शनिवार का, तो ऐसे झूमत रहो सुनत रहो और का कहे के है, बस ऐसी जो जितनी चिट्ठी पाती भेज दी हो ना आप सब लोग मेल भेजिए उसे आपका हम शामिल करने की कोशिश पूरी पूरी कर रहे हैं, काहे से कि बखत बहुत कम है, लेकिन जो मौसम की दरकार है ना हमका, ये जो मौसम आप सभी लोगों को बहुत नीक लागत हुई जो मौसम में यू बदलाव आए, यानी कि ये जो मानसून की जो आमद हुई गई है उमा का मन करत है, यही झूला है झूमने का खावे पिए का मन करत है, लेकिन बारिश के मौसम तनिक बहुत अगर अधिक बारिश होते तो तनी तकलीफ होता है, लेकिन उसके साथ साथ बारिश के मौसम का जो आनंद होता है ना वही के नहीं खोवे के चाहिए, तनिक भी नहीं चूके के चाहिए, तो हम सोचे थे कि यू गम नहीं आप लोग को सुनवा दे झलुआ, उसके बाद का हुई थे बनवादी जी से का कहा जाते, तो चलो वो सब सुना जाए उसके बाद फिर हम चिट्ठी पाती मेल के जरिए जो उन्हें वो शामिल करब।

इतना कम वक्त बचा है कि कहा कही 10:56 शुरू हो गए हैं और मोहम्मद आसिफ जी लिखे ने कार्यक्रम बहुत अच्छा लिख रहा है और रत्ना मैम आप थोड़ा जल्दी जल्दी आवा करो। तो मोहम्मद आसिफ अंसारी जी यू बात कहे के खातिर बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर आई पे। और उसके बाद का लिखी है हाउस दीक्षित जी कौन नाम से लिखी है, गुड मॉर्निंग लिखे ने, और सवेरे 6 बजे से कार्यक्रम सुन रहा हूँ सभी बहुत अच्छे, सुगंध माटी की कार्यक्रम हमेशा इंतजार रहता है और समस्त डॉक्टर्स को भी आज बधाई देने का दिन है, उनको भी शुभकामनाएं। और मैडम लॉन्ग लिव रिगार्ड्स अनिल कुमार दीक्षित एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ से, थैंक यू सो मच। अंग्रेजी हम बोल दी तो हर चक्कर में दीक्षित सर। वही के बाद राजकमल जी भी मेल कर रहे हैं, वही के बाद बहुत इंतजार रहते यू प्रोग्राम का। और हैदर अली का कोई अच्छा कौनो गीत के नाम यू लिखे ने राज कमल यादव जी। वही के बाद तेज बहादुर यादव जी को भी मेरा गवाह है, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करे के बखत है कायसे की बेला है चलेगी। तो अगला कार्यक्रम बहुत जो आवे वाला बहुत नीक और बहुत रोचक होवे वाला है, कायसे कि आप सब बने रहो जुड़े रहो कौन से 107.7 FM रेनबो से, रत्ना शुक्ला रही है तो हर संगे और देखो आगे का होवत है। तो चलो ये गीत सुनो, वही के बाद हम लौट के आवत ही।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हम नवा प्रोग्राम में। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौसर, जो आज सुबह 7 बजे से हूँ आपके साथ। और अब हम नवा प्रोग्राम में मेरा साथ निभाने के लिए स्टूडियो में आ चुकी हैं मेरी हम नवा आरजे आरती।
1: बिल्कुल कौसर, हेलो श्रोताओं, नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी होंगे अच्छे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ ही इंतजार कर रहे होंगे कि कब 11 बजे और 11 बजते ही शुरू हो जाए प्रोग्राम हम नवा।
0: तो बस आरती, हमारे श्रोताओं की जो इंतजार की घड़ियां है ना, वो खत्म हो चुकी हैं। वैसे कहते हैं ना आरती कि अगर जिंदगी में इंतजार ना हो तो शायद मिलने की खुशी भी आधी रह जाए, और हर इंतजार अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है।
1: बिल्कुल, और मजेदार बात पता है क्या है? वो ये है कि घड़ी की सुइयां एक जैसी ही चलती हैं, लेकिन जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो, या किसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं तो एक एक मिनट लगने लगता है जैसे वो एक एक घंटा हो गया हो।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने कि वो जो एक मिनट का इंतजार रहता है ना, वो एक घंटे की तरह ही लगने लगता है। पर आरती, कहते हैं ना कि इंतजार जितना ज्यादा हो, मंजिल उतनी ही यादगार और खूबसूरत बन जाती है। तो ये तो इंतजार की बात हुई, लेकिन हमें पता है कि हमारे जो लिसनर्स है वो इंतजार कर रहे हैं कि आज कौन कौन से विषयों पर हम बात करना चाह रहे हैं, ताकि वो भी अपने विचार हमसे शेयर कर सके। तो आज के विषय आरती बता दो।
1: बिल्कुल, आज सबसे पहले बात होने वाली है, कहते हैं ना कि वन महोत्सव सप्ताह, इसकी बात होगी, और इसके बाद बात होगी लंबी छुट्टियों के बाद विद्यालयों की, पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि पर बात होगी, और बात होगी आपके कंज्यूमर राइट्स की, और इसके साथ ही साथ बात होगी डॉक्टर्स डे की, यानी आज
0: बहुत इंपॉर्टेंट डे है वो। और तो बस हमारे श्रोताओं ने, भाई आरती ने बता दिए हैं सारे टॉपिक, सारे विषय। तो आपके पास भी इन विषयों से संबंधित जो भी विचार हो, जो भी यादें हो, कुछ भी हो, आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल पर। और हमारी ईमेल आईडी का एड्रेस हम आपको बता देते हैं, AIRKANSOMEDIA@gmail.com। और अब हमारे लिसनर्स आरती इंतजार कर रहे होंगे एक खूबसूरत से गीत का। क्या बात है, बार बार इंतजार की बातें करी तो इंतजार ही इंतजार हो रहा है।
1: अब इंतजार को खत्म करो और जल्दी से सुनवा दो एक बढ़िया सा सॉन्ग।
0: बिल्कुल, मौका भी है, दस्तूर भी है, हम दोनों हैं, और हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स इंतजार तो खत्म करते ही है। तो बढ़िया सा गाना एक आरती सुनवा देते हैं अपने लिसनर्स को।

0: और कौसर, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, और सच में कहते हैं ना, आज का दिन बन गया और अब चल रहा है प्रोग्राम।
1: नहीं, हम तो नवा, तुम ये बताओ कि तुमने कहा तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तो तुमने मुझे क्या देखा और क्या जाना, ये भी तो बताओ।
0: और देखा ये कि आज बहुत ही खूबसूरत लग रही है कौसर। और कहते हैं ना, जब खूबसूरती आप देख लेते हैं, जब किसी सुंदर चीज को आप देख लेते हैं, तो दिन बन ही जाता है। और दिन तो फिलहाल आज का बन गया है। और दिन से ध्यान आया कौसर, आज है एक खास दिन।
1: बिल्कुल आरती, आज है 1 जुलाई और आज का दिन समर्पित है उन लोगों के नाम जिनके हाथों में इलाज है, चेहरे पर भरोसा है और दिल में सेवा का जज्बा। आज पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है नेशनल डॉक्टर्स डे, और ये दिन महान चिकित्सक, शिक्षाविद, समाजसेवी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों की स्मृति में मनाया जाता है। और बड़ा ही खास चीज ये है कि मतलब आज उनकी जयंती भी है और आरती आज उनकी पुण्यतिथि भी है।
0: बिल्कुल,
1: बड़ा ही ये एक दुर्लभ संयोग है ना आरती।
0: और यही वजह है कि ये दिन सिर्फ डॉक्टर्स को सम्मान देने का नहीं, बल्कि उनके योगदान को याद करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है।
1: आरती, डॉक्टर जो होते हैं ना, वो सिर्फ हॉस्पिटल्स तक सीमित नहीं होते। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल में ही हमें डॉक्टर मिलते हैं, वहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। जन्म से लेकर लाइफ के हर पड़ाव तक वो हमारे साथ रहते हैं, चाहे छोटी सी तकलीफ हो या कोई गंभीर बीमारी। उनका ज्ञान, अनुभव लाखों लोगों की जिंदगी में नई उम्मीदें जगाते हैं। खासकर महामारी जो अभी एक थी, जो कोविड का एक समय था आरती, याद होगा तुम्हें कि कितना लोगों ने उसकी मार झेली है ना, तो वो कठिन समय में डॉक्टर्स से जो थे वो हमारे, वो दिन रात उन्होंने एक कर दिया, दिन रात मानवता का जो उन्होंने एक मानवता की मिसाल पेश की है सेवा करके, वो सच में एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है।
0: और सच में कौसर, वो जो टाइम था, वो टाइम पीरियड जो था, वो बिल्कुल अलग ही था। और उस समय हमें, जब हम देखते थे, बाहर देखते थे, हॉस्पिटल्स में देखते थे, तो डॉक्टर्स ही दिखते थे सेवा करते हुए। तो क्यों ना हम ये बात सुन ले।
1: बिल्कुल, हमारे कुछ डॉक्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं, देखते हैं कि वो आज इस दिवस पर हमसे अपने क्या विचार शेयर करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं।
2: अवसर पर आप सभी को बधाइयां एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और मैं आकाशवाणी का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि कुछ मंच हैं जो डॉक्टर्स को बहुत सम्मान देते हैं, उनमें से आकाशवाणी एक है। और डॉक्टर्स डे के अवसर पर आप, मेरी आप सब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले तो अपने लेवल पर ही रखें। उसके लिए आपको हेल्दी एवं न्यूट्रिशियस डाइट का चयन करना पड़ेगा, और आप प्रतिज्ञा करें कि आपको दिन में कम से कम 1 घंटा अपने लिए देना है, और उसमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आप योगा करें, चाहे जुम्बा करें, चाहे एरोबिक्स करें, और चाहे जिम ज्वाइन करें, चाहे आउटडोर एक्टिविटी करें कोई भी, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तभी हमारा देश आगे उन्नति कर सकेगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
3: मैं डॉक्टर फहीम अंसारी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर, सभी कानपुर वासियों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। आइए प्रण लें कि हम धूम्रपान और मदिरापान को त्याग देंगे, दूर रहेंगे उससे, यातायात नियमों का पालन करेंगे, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाकर ही अपनी गाड़ी चलाएंगे, स्वस्थ आहार लेंगे, जंक फूड से बचेंगे, अच्छी नींद लेंगे, जल्दी सोने की आदत डालेंगे, और सुबह उठकर व्यायाम करेंगे, हल्की फुल्की वॉक करेंगे, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ बने और हम अपने समाज को एक स्वस्थ और विकसित दिशा की तरफ अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत।
0: कितनी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। और देखो, आज भी उनकी जो सलाह है, उनकी जो बातें हैं, वो सुनवा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को करती हैं सुरक्षित। और कौसर, कई डॉक्टर्स अपने परिवार से दूर रहकर भी मरीजों की सेवा करते हैं। उनकी मेहनत, त्याग और समर्पण हम अपने शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, शब्द कम पड़ जाएंगे अगर हम उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, तो शायद पूरा दिन भी कम कम पड़ जाए आरती। तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे पर हम सभी डॉक्टर्स को दिल से सलाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और कि आपकी मेहनत, आपकी सेवा और आपका समर्पण अनगिनत जिंदगी जो होती है उनमें मुस्कान लेकर आता है। स्वस्थ समाज के निर्माण में आपका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। सच में आरती, हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं तो बस लाइफ सेफ समझो।

0: अगर तुम साथ हो। अच्छा आरती, जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ ना, तो इस गाने में मुझे अगर तुम साथ हो, ये कई सेंस में मुझे ये गाना लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अगर तुम साथ हो, कि ईश्वर अगर साथ है तो सब कुछ है। और यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्टर्स के लिए ये गाना प्ले किया कि अगर तुम साथ हो, सच में डॉक्टर्स अगर साथ हैं तो हमें नई एक जिंदगी जीने की उम्मीद देते हैं वो, है ना। डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं। और आरती देखो ना, बच्चों की समर वेकेशंस जो है ना वो खत्म हो चुकी हैं और बच्चे फिर अपने रूटीन में आने लगे हैं। गर्मियों की लंबी छुट्टियों के बाद एक बार फिर स्कूलों की घंटियां गूंजने लगी हैं और हम लोग को भी अपने स्कूल टाइम याद आ जाते हैं ना बच्चों को देखकर। और वैसे भी सच कहूँ तो बच्चों के चेहरे एकदम जैसे लगता है खिल उठे हैं, क्योंकि दोस्तों से मुलाकात होने की जो खुशी है, जो उनके दोस्त छूट चुके थे कुछ दिनों
1: बिल्कुल
0: के लिए, तो वहीं कुछ बच्चे ये भी आरती सोच रहे होंगे कि काश छुट्टियां थोड़ी और बढ़ जाती जो घुमक्कड़ टाइप के होंगे। लेकिन सच में स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को संवारने की भी पहली पाठशाला है।
2: बिल्कुल कौ सर। और छुट्टियों में चाहे कितनी भी मौज मस्ती कर ले, लेकिन एक समय के बाद जब बच्चों को अपने दोस्तों, क्लासमेट्स एंड जो स्कूल की चहल पहल होती है ना, उसकी कमी महसूस होने लगती है। और फिर नई किताबों की खुशबू, नई नोटबुक्स कह सकते हैं ना, मतलब जो अंदाज होता है स्कूल जाने का, एक अलग ही उत्साह होता है, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड के बाद होता है।
0: बिल्कुल
2: जो छुट्टियां होती हैं वो बिता चुके होते हैं, और इसके बाद जब वो दोबारा से अपना बैग उठाते हैं तो उनको एक अलग अनुभव होता है। एक कहते हैं वो चीजें अच्छी लगने लगती है दोबारा से, विद एनर्जी।
0: बिल्कुल, नया संकल्प लेकर स्कूल जाना एक अलग तरह का ही उत्साह देता है।
2: हाँ।
0: वैसे आरती, लगातार पढ़ाई के बीच थोड़ा सा विराम, थोड़ा आराम बच्चों की मेंटल एनर्जी को फिर से तरोताजा कर देता है। यानी छुट्टियां भी एजुकेशन प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये कहें तो कोई दो राय नहीं होगी। और अब आज 1 जुलाई है, स्कूल खुलने लग गए हैं, तो धीरे धीरे फिर से दिनचर्या में लौटना भी जरूरी हो जाता है।
2: बिल्कुल। और छुट्टियों में देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, ये आम बात होती है।
3: छुट्टियों में देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना, ये आम बात होती है। स्कूल खुलने के बाद ना थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को पुराने रूटीन में लौटने का, और इसीलिए पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों का सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है।
0: वैसे आरती, कई बच्चे तो छुट्टियों का पूरा हाल एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे से बताते हैं और एक दूसरे से नई बातें भी सीखते हैं। कोई अपने गाँव गया होता है तो वहाँ की बातें बताता है, कोई हिल स्टेशन घूमने गया होता है वहाँ की बात बताता है, कोई नानी दादी के घर गया होता है, तो ये सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनका आदान प्रदान भी शिक्षा का एक एक पार्ट बन जाता है ना।
3: बिल्कुल। और ये वैसे भी ना विद्यालय केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता है, यहीं पर बच्चे डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड नेतृत्व जैसे जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, उन्हें भी सीखते हैं। छुट्टियों के बाद स्कूल लौटना दरअसल उनके मूल्यों की दुनिया में फिर से प्रवेश करना होता है, जो आगे चलकर जीवन की नींव बनते हैं। कौशल,
0: यही वजह है कि विद्यालय को समाज निर्माण की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, जहां बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ सीखते हैं और एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं उनके कदम। वैसे आरती, मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि स्कूल में दोस्तों और टीचर्स के साथ संवाद बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है।
3: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए ना लंबे समय तक जब वो घर में रहते हैं, तो घर में रहने के बाद स्कूल का जो वातावरण होता है ना कौसर, वो बच्चों के सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: तो ये तो ही हमारी अपनी राय, लेकिन चलो देखते हैं एक टीचर का इस बारे में क्या कहना है ना।
4: हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा और मैं एक टीचर हूँ। आज 1 जुलाई है और लंबी समर वेकेशंस के बाद आज से हमारे नए एजुकेशनल सेशन की शुरुआत हो रही है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हर नई शुरुआत अपने साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। हर स्टूडेंट की अपनी लर्निंग स्टाइल, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी एक अलग पहचान होती है। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बल्कि हर बच्चे के टैलेंट को पहचानना और

उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना भी है। इस नए सेशन में मैं सभी स्टूडेंट से बस इतना कहना चाहूँगी कि इस साल सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागिए। अच्छे मार्क्स जरूर इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ नया सीखना, क्वेश्चंस पूछना, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना। और सभी पेरेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बच्चों पर सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर मत दीजिए, उनकी बात सुनिए, उन्हें समझिए और इस सफ़र में उनके बिगेस्ट सपोर्टर बनिए। आपका ट्रस्ट, एनकरेजमेंट और थोड़ा सा टाइम उनके कॉन्फिडेंस को बहुत मजबूत बना सकता है। स्कूल और पेरेंट्स जब एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं तब हर बच्चा अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। इसलिए आइए इस पूरे सेशन के दौरान हम सब मिलकर एक पॉजिटिव, सपोर्टिव और इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नया सेशन हम सबके लिए लर्निंग, ग्रोथ और बहुत सी ब्यूटीफुल मेमोरीज लेकर आएगा। विशिंग ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अ वंडरफुल, सक्सेसफुल एंड जॉयफुल एकेडमिक ईयर अहेड। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।

0: आते
1: बिल्कुल कौसर, याद आते हैं अपने स्कूल डेज और ये
0: लगता है कि फिर बचपन वाला वापस आ जाए ना।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रही
0: हूँ, लेकिन जो वक्त चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता।
1: बिल्कुल नहीं आता है, और ये वक्त ही होता है जो हमें आगे की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रेरित करता है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस वक्त को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए और कहते हैं समय का बिल्कुल सदुपयोग करना चाहिए, और उसी का सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
0: बिल्कुल, तो आज है 1 जुलाई और भारत में हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला एक सप्ताह जो होता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय वृक्षारोपण उत्सव, यानी कि वन महोत्सव, जो कि आज से हो चुका है शुरू।
1: बिल्कुल कौसर, और बरसात की बूंदों की फुहार जब धरती को हरियाली की चादर उड़ाती है और तब प्रकृति हमें एक संदेश देती है, पेड़ लगाइए जीवन बचाइए, और इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है।
0: तो आज मनाया जा रहा है वन महोत्सव जो 7 तारीख तक मनाया जाएगा। आरती, इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री K.M. मुंशी ने की थी ताकि लोगों में वृक्षारोपण और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े।
1: बिल्कुल कौसर, और ये जागरूकता बढ़ी भी है तब से अब तक, और आज कह सकते हैं आज की पीढ़ी बहुत जागरूक हो चुकी है, और वे सभी जानते हैं कि पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि वर्षा लाने, मिट्टी का कटाव रोकने, भूजल स्तर बनाए रखने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और प्रदूषण पूरी दुनिया के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, तब वृक्ष ही हैं जो हमारे सबसे बड़े साथी हैं। और कौसर, हम सभी ने बचपन में एक पंक्ति सुनी है ना, एक वृक्ष 10 पुत्र समान।
0: और तब शायद ये जो पंक्ति है इसका मतलब समझ में नहीं आता था जब हम छोटे थे, लेकिन अब जरूर समझ में आता है। और ये केवल कहावती नहीं है आरती, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एक मैसेज है, एक संदेश है। आज आवश्यकता केवल पौधे लगाने की नहीं है बल्कि उनकी देखभाल करने की भी है। हमारा कर्तव्य बनता है उनकी देखभाल करना। यदि लगाया गया पौधा कुछ वर्षों तक सुरक्षित रहे तभी विशाल वृक्ष बनकर समाज और आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचा सकता है।
1: एग्जैक्टली कौसर, और वन महोत्सव सिर्फ मनाने का या ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह जन भागीदारी का उत्सव है। स्कूल, कॉलेज, पंचायतें और आम नागरिक मिलकर यदि हर वर्ष एक एक पौधा भी लगाएं और उसकी देखभाल करें तो हमारा देश अधिक हरा भरा बन सकता है।
0: और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक अभियान चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, जो है तब भी पौधा ही लगा रहे हैं सब, और सच में बड़ी अच्छी पहल है और बड़ा अच्छा ये कदम जो उठाया गया है ना।
1: और तो समय समय पर और भी अभियान चलाए जाते रहे हैं और अभी भी चलाए जा रहे हैं, बस जरूरत है उनके साथ जुड़ने की और कदम से कदम मिलाने की।
0: तो आज हम अपने आप से आरती एक छोटा सा वादा कर सकते हैं कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और जल और प्रकृति का संरक्षण करें।
1: बिल्कुल कौशल,
0: आज और लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, जल और सुरक्षित भविष्य का उपहार है। और ऐसे में आरती मुझे एक गाना याद आ रहा है, सच में वो गाना जब भी बजता है मुझे प्रकृति की जो सुंदरता है, जो हरियाली है वो जरूर
1: मैं समझ गई तुम कौन सा गाना सुनवाना चाहती हो। मैं प्ले कर रही हूँ वही गाना।
0: बिल्कुल।

0: सच में ये ऐसा गाना है कि सच में पहाड़, पेड़ पौधे, हरियाली, सब कुछ आंखों के सामने एकदम वही नजारा बिल्कुल आ जाता है ना आरती।
1: बिल्कुल कौसर, और जुड़ चुके हैं बहुत सारे श्रोता हमारे साथ हमनवा प्रोग्राम में। प्रोग्राम चल रहा है हमनवा, और देखो ना टाइम पीरियड बिल्कुल मिड वाला हो रहा है
0: तो
1: कौसर।
0: एक बार फिर से अपनी मेल आईडी बता देते हैं आरती, है ना,
1: बिल्कुल हाँ।
0: क्योंकि श्रोता हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा अपने विचार शेयर कर पाए। तो हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। तो बस जल्दी से हमारे जो विषय हैं आज के, इसमें आप क्या अपने विचार रखना चाहते हैं, क्या आपकी यादें हैं, कुछ ऐसी याद जो आपके साथ भी ऐसे गुजरी हो, घटी हो,
1: और
0: तो
1: इसके साथ साथ कौसर ये भी शेयर कर सकते हैं कि क्या है उनके कंज्यूमर राइट्स,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि वे होते हैं उपभोक्ता, और उपभोक्ता होने के साथ उनको बहुत सारे राइट्स भी मिले होते हैं, उनके बहुत सारे अधिकार होते हैं, और क्या है उनके वो अधिकार जिनका वो उपयोग करते हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ आज के हमनुमा प्रोग्राम में।
0: बिल्कुल।
1: और कौसर कहते हैं ना कि हम सभी, और अब जो टॉपिक है वो यही है कंज्यूमर राइट्स के बारे में, तो
0: बिल्कुल
1: हम उसकी भी बात करते हैं आगे। कौसर हम सभी रोज किसी ना किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं, चाहे हम राशन खरीदें, मोबाइल रिचार्ज कराएं, ऑनलाइन शॉपिंग करें, या बिजली का बिल भरें, या फिर कोई सेवा लें, हर जगह हम उपभोक्ता हैं। लेकिन क्या हम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं?
0: और नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। और आरती, उपभोक्ता होने के नाते हमें कई सारे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे अधिकार हैं वो हमें प्राप्त हैं ना, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार। इसका अर्थ है जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से सुरक्षा का अधिकार, है ना। और खरीदारी करने से पहले उपभोक्ता को जो उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादों और सेवाओं की गारंटी पर भी जोर देना चाहिए, है ना। उन्हें ISI और जो एग मार्क होता है, जैसे गुणवत्ता वाले जो ये भी मार्क होते हैं ना, उन सबको भी देखकर खरीदना चाहिए, तभी बेहतर होता है खरीदारी करना।
1: बिल्कुल कौसर, साथ ही जैसे सूचित होने का अधिकार होता है, इसका अर्थ है वस्तुओं की गुणवत्ता,

0: मात्रा, उनकी शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में हमें सूचना होनी जरूरी होती है। और इसी तरह हमें एक और अधिकार मिला होता है, वो होता है चुनने का, है ना कौसर? और जहां भी संभव हो, जहां एक प्रतिस्पर्धा होती है कीमतों की, वहीं से हमें विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उन तक पहुंच सुनिश्चित करने का ये अधिकार प्राप्त होता है।
1: और आरती, इसके अलावा सुने जाने का भी अधिकार होता है ना?
0: और ऐसे ही अधिकार बताते हुए हमसे जुड़ रही है एक श्रोता, तो क्यों ना उनकी बात भी सुन ली जाए कौसर।
1: बिल्कुल सुन ली जाए,
0: और फिर इसके बाद बताएंगे कि उनके और क्या अधिकार है।
1: बिल्कुल।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है, मैं कानपुर के नवस्था क्षेत्र का निवासी हूँ। आपकी तरह मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, और उपभोक्ता होने के नाते हमारे पास कुछ अधिकार भी हैं। जब हम बाज़ार से या ऑनलाइन कुछ भी सामान मंगाते हैं, तो ये हमारा हक है कि हमें बिल्कुल सही और सुरक्षित सामान मिले। जो सामान हम ले रहे हैं उसकी सही कीमत, एक्सपायरी डेट और क्वालिटी के बारे में भी जानने का हमारा पूरा हक है। कोई भी दुकानदार हमें ज़बरदस्ती उसके पसंद का सामान लेने पर मजबूर नहीं कर सकता है। ये हमारा अधिकार है कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि घर आने पर सामान खराब निकल जाता है या गलत सामान आ जाता है। ऐसे में हमें दुकानदार से इसकी शिकायत करनी चाहिए। यदि वो इसका समाधान नहीं करता है, तो हम कंज्यूमर फोरम पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम पर शिकायत दर्ज कराने के लिए हमारे पास सामान का एक पक्का बिल जरूर होना चाहिए। इसीलिए अगली बार जब भी कोई सामान खरीदें, तो दुकानदार से उसका पक्का बिल जरूर मांगें, क्योंकि ये पक्का बिल आपको धोखाधड़ी से बचा सकता है। धन्यवाद।
1: तो ये इन्होंने बड़ी ही अच्छी बातें बताई हैं जो उपभोक्ता के अधिकार होते हैं उनके बारे में। तो और आरती, हम बात कर रहे थे कि एक सुने जाने का अधिकार भी होता है ना, तो सुने जाने और ये आश्वस्त होने का अधिकार कि उपभोक्ता के हितों पर उचित जो मंच है, उचित विचार उस पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसके साथ ही जो एक निवारण का अधिकार होता है।
0: हाँ।
1: यानी कि जो शिकायतें हम दर्ज कर रहे हैं, शिकायतें तो हम बहुत सारी दर्ज करते हैं, लेकिन उसका निवारण किस तरह होना है, उसका क्या रूल है, वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
0: तो उसका एक तरीका यही है कि जो हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं वो सही होनी चाहिए, उसका तरीका है वो सही होना चाहिए, है ना कौसर? तो किस तरह से हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है।
1: बिल्कुल। तो हम ऑनलाइन के माध्यम से करवा सकते हैं, है ना? आजकल तो ऑनलाइन हर चीज हो रही है।
0: बिल्कुल कौसर। ऐसे ही NCHAPP के माध्यम से, यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800 114 000 पर भी हम अपनी जो प्रॉब्लम है, जो शिकायत है, उसे दर्ज करा सकते हैं।
1: साथ ही एक दूसरा नंबर भी है।
0: बिल्कुल सर,
1: 1915। आप इस नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, है ना? और साथ ही उमंग ऐप एक है, उसके माध्यम से भी करा सकते हैं। व्हाट्सएप तो है ही।
0: हाँ बिल्कुल, और व्हाट्सएप के जरिए भी हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन कभी भी हमें इस असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर कोई सामान खराब हो जाता है या खराब आ जाता है, हमें मिल जाता है, तो उसको लेकर के हम शांत बैठ जाएं। बिल्कुल भी उससे डरना नहीं चाहिए, अपनी बात उचित मंचों पर रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और जो बात हम यहाँ से कहते हैं, जिन बातों के लिए आपको सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं, वो भी जरूर सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सुनवा रहे हैं एक बढ़िया सा सॉन्ग।

0: बिल्कुल सुन लिया आरती, और अपने लिसनर्स की बात तो हम जरूर सुन लेते हैं और ऐसे ही सुन लेंगे इस ईमेल के जरिए जो हमें पास अब आई है।
1: बिल्कुल कौसर, क्या है ईमेल? ये ईमेल हमें प्राप्त हो रही है दयाशंकर शुक्ला जी की, और लिख रहे हैं, जय सियाराम आरती दी, कौसर दी, हम और हमारी फैमिली डेली आपका प्रोग्राम सुनते हैं, आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि इस मेल में शामिल करने वाले जो नाम है वरदान शुक्ला, ईशानी शुक्ला,
0: और ये जो ईमेल हमारे पास आई है ये नौबस्ता कानपुर से आई है। तो अब ईमेल तो हमने पढ़ ली है आरती, प्रोग्राम में आगे बढ़े।
1: बिल्कुल आगे बढ़ते हैं।
0: तो और जैसे कि हम लोग अभी शुरू से प्रोग्राम में बता ही रहे हैं कि आज 1 जुलाई है और बड़ा ही खास दिन है आज, क्योंकि कई कई सारी चीजें हैं, कई सारी खासियत है आज के दिन की। तो 1 जुलाई का दिन हमें भारत के एक ऐसे महान सपूत की याद दिलाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा, स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी भाषा के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। और हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन की, जिनकी पुण्यतिथि है आज, जिन्हें आज पूरा देश श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहा है।
1: बिल्कुल कौसर, और उन्हें राजर्षि की उपाधि भी मिली थी। और पता है इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था प्रयागराज में सन 1882 में। और आज जब हम भाषा की बात करते हैं तो अक्सर सुविधा और उपयोगिता की चर्चा होती है, लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन का मानना था कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि संस्कृति, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना का वाहक भी होती है।
0: और यही कारण था कि उन्होंने हिंदी को देश की राजभाषा बनाने के लिए लगातार प्रयास किए, कोशिशें करी और संविधान निर्माण के दौर में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने की बहस में उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही। वे चाहते थे कि देश की प्रशासनिक और जनजीवन की भाषा आम लोगों से जुड़ी हो, है ना?
1: बिल्कुल कौसर, लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन जी को केवल हिंदी प्रेमी कह देना उनके व्यक्तित्व को सीमित कर देता है। वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे, जेल गए, संघर्ष किया और सार्वजनिक जीवन में सादगी का एक ऐसा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया जो आज भी प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल सही कहा आरती तुमने, और इसीलिए लोग उन्हें राजर्षि कहकर पुकारते थे, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें राजनेता की क्षमता और ऋषि जैसी सादगी दोनों हो। पुरुषोत्तम दास टंडन का जो जीवन है वो बताता है कि असली नेतृत्व विचारों, त्याग और जनता के प्रति समर्पण से आता है, और उन्होंने दिखाया कि व्यक्ति की ताकत उसके पद में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होती है।
1: और यही वजह है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी खासियत थी ना सादगी और ईमानदारी। और आज जब हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की

0: केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है।
1: तो चलो आरती, इस महान स्वतंत्रता सेनानी, हिंदी प्रेमी और सच्चे राष्ट्रभक्त को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस गाने के साथ।

0: बिल्कुल, देश मेरे मेरी जान है तू, मेरी शान है तू, मेरा सब कुछ है तू। क्योंकि देश के ऊपर जब ऐसी बात होती है, सच में जज्बा मेरे जैसे, मैं इतने टाइम क्रेजी हूं ना, जज्बा ऐसे ही जागता है।
1: बिल्कुल कौसर, और ये जज्बा जागना भी चाहिए। लेकिन अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात होने जा रही है ज्ञान विज्ञान सेगमेंट की। और इस सेगमेंट में आज का हमारा टॉपिक है जुगनू चमकता क्यों है। और कौसर, क्यों चमकता है जुगनू
0: ये एक
1: ये?
0: सवाल है, ये एक सवाल है कि आखिर
1: हाँ,
0: चमकता क्यों है।
1: चमकता क्यों है?
0: तो बरसात की सुहानी शाम हो, चारों ओर हरियाली बिखरी हो और अंधेरे में टिमटिमाते छोटे छोटे जुगनू दिखाई दें, तो ऐसा लगता है मानो धरती पर छोटे छोटे सितारे उतर आए हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नन्हे जीव आखिर चमकते क्यों है? सवाल फिर वही है।
1: हाँ, कि ये नन्हे जीव चमकते क्यों हैं? और इसका एक कारण है, जुगनू होता तो छोटा सा कीट है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह अपने शरीर से स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को जैव दीप्ति कहा जाता है। और कौसर, जुगनू के शरीर के पिछले हिस्से में एक विशेष प्रकाश उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इनमें एक रासायनिक पदार्थ ल्यूसीफेरेज नाम का एंजाइम और ऑक्सीजन और ऊर्जा की सहायता से एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसी अभिक्रिया से ठंडी रोशनी पैदा होती है। इसे ठंडी रोशनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग कोई गर्मी नहीं निकलती।
0: तो अब सवाल ये है कि जुगनू ये रोशनी आखिर बनाता क्यों है? फिर से एक सवाल।
1: हाँ,
0: तो
1: तो
0: सबसे
1: इसका
0: पहला कारण है कि अपने साथी को आकर्षित करना। नर और मादा जुगनू अलग-अलग ढंग से चमकते हैं। उनकी चमक का एक संकेत होता है जिसे पहचान कर वे एक दूसरे तक पहुंचते हैं।
1: एग्जैक्टली कौसर, और दुर्भाग्य से आज पहले की तुलना में जो जुगनुओं की संख्या है ना, वो कम होती जा रही है। और इसका कारण है बढ़ता प्रदूषण। और ये जो प्रकाश प्रदूषण होता है ना, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग और प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना इसके कारण भी होता है। यदि हम प्रकृति का संतुलन बनाए रखें, हरियाली बचाएं, तो आने वाली पीढ़ियां भी जुगनुओं की मनमोहक रोशनी

0: का आनंद ले सकेंगी। और प्रकृति की इस अद्भुत वैज्ञानिक कला का जीवंत उदाहरण भी देख सकेंगी, है ना। तो जुगनू चमकते हैं, यहाँ पर एक गाना मुझे फिर से याद आ गया। क्या करें, जब मैं कोई टॉपिक बोलती हूँ तो मेरे माइंड में वो वैसे ही गाना बिल्कुल सडनली क्लिक हो जाता है।
1: और तुम्हारे माइंड का क्लिक हुआ गाना प्ले कर रहे हैं और सुनवाते हैं लिसनर्स को।

0: सुनी सुनी अंखियों में जुगनू चमक उठे, और सुनी सुनी अंखियों में बहुत सारी उम्मीदों के, बहुत सारी आशाओं के भी जुगनू चमकते हैं। और आज डॉक्टर्स डे है, और इस दिवस पर बहुत सारे ऐसे हमारे जो साथ के भी लोग होंगे जिनको बड़ी ही उम्मीदें, बड़ी ही आशाएं होंगी डॉक्टर्स से, है ना। तो एक बार फिर आज के डॉक्टर्स दिवस पर हम अपने डॉक्टर्स को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, है ना। और अब बढ़ जाते हैं
1: अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। और कौसर ये बताओ कि आज की रेसिपी क्या है?
0: बड़ी अच्छी रेसिपी है, दो दो चीजों को मिलाकर एक रेसिपी मैंने बनाई है, और कल घर पे भी बनाई थी, इसलिए मैंने कहा आज यहाँ बताऊंगी जरूर।
1: बिल्कुल बता दो, क्योंकि लिसनर्स बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी रेसिपी का, और ये रेसिपी होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसको सुनेंगे लिसनर्स।
0: तो आज बनाने जा रहे हैं मैंगो फालूदा विद रबड़ी, और इसके लिए दोनों की अलग अलग सामग्री है। आरती बता दो।
2: तो सामग्री है फालूदा बनाने की, एक कप सिवैया, दो टीस्पून सब्जा बीज, एक कप चीनी, एक लीटर दूध, एक कप मैंगो पल्प।
0: और रबड़ी बनाने की सामग्री है एक लीटर दूध, एक कप चीनी, दो तीन इलायची का पाउडर, और गार्निशिंग के लिए कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। अब फालूदा बनाने की जो विधि है वो बता देते हैं कि सबसे पहले दूध को गर्म करें और चीनी, सब्जा बीज और सिवैया मिलाकर पकने दें। 15 मिनट बाद गैस को ऑफ कर दें और इसे अब ठंडा होने दें। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसमें मैंगो पल्प डालकर अच्छे से मिला लें और इसको रख दें उठाकर फ्रिज में। और इसके बाद हमें बनानी है रबड़ी। तो आरती रबड़ी कैसे बनानी है?
2: कैसे बनानी है कौसर?
0: तो मुझे ही बताना पड़ेगा, तुम सिर्फ खाने के लिए हो।
2: अब तुम इतनी अच्छी अच्छी रबड़ी बनाओगी तो खाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना कौसर।
0: तो इसे बनाने के लिए जो एक लीटर दूध है उसे गैस पर एक बर्तन में रखकर फ्लेम सिम कर दें और पकने दें, और तब तक पकने दें जब तक ये दूध एक चौथाई ना रह जाए। अब ये अच्छे से जब गाढ़ा हो जाए तो गैस को ऑफ कर दें, और अब चीनी और इलायची पाउडर मिला दें इसमें, और थोड़ा थोड़ा चला दें जिससे कि चीनी जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसे भी ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें और

0: सर्व करते टाइम प्लेट में मैंगो फालूदा रखें, ऊपर से रबड़ी डालकर ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। अच्छा, दोनों चीज़ें हमारे लिसनर्स ने जो बहुत खाई होंगी, अलग अलग रबड़ी अलग, मैंगो फालूदा अलग, लेकिन सच मानिए जो आज हमने मैंगो फालूदा विद रबड़ी जो बताया है, तो जब इसको खाया जाएगा ना तो इस तरह से बस बोलेंगे कि बस वाह क्या ही स्वाद है और मज़ा दोगुना होने वाला है। फिलहाल
1: बिल्कुल
0: तो
1: कौशल, क्योंकि तुम बना भी चुकी हो और खा भी चुकी हो और हम सभी ने अभी ये जो रेसिपी सुनी उसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे और लिसनर्स भी बनाएंगे। और फिलहाल इस मीठे मीठे से स्वाद को शेयर करते हैं एक बढ़िया से सॉन्ग के
0: बिल्कुल
1: साथ।
0: बिल्कुल।

0: तो आरती चलो चले मितवा, तो चलो हम भी चले। और मैं 7 बजे से सुबह से आई हुई हूँ, तो मुझे तो खैर जाना ही है। तो अब अपनी रेडियो हम सफर कौसर को दीजिए आज के लिए इजाजत, लेकिन आरती रहेंगी आपके साथ।
1: बिल्कुल, मैं रहूंगी आपके साथ दिन में 3 बजे से शाम 5 बजे तक, और सुनेगा प्रोग्राम म्यूजिक आर्ट जिसमें आप रहेंगे हमारे साथ। और फिलहाल अब इस प्रोग्राम से ले रहे हैं आपसे इजाजत,
0: और कहना है हम दोनों को टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर सनदी लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सनदी लेखाकार भारत की आर्थिक यात्रा में विश्वसनीय साझेदार रहे हैं। पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से सनदी लेखाकार देश की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों में विश्वास सृजित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनने के प्रयासों में सनदी लेखाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी TET 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रही यूपी TET की सुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने यूपी TET परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृति करने का भी फैसला लिया है। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। यह वृद्धि नवीनतम पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत की गई है। इसके तहत नए बदलाव 36 प्रश्नों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनने की लागत अब 2,500 रुपए होगी। 60 प्रश्न

वाले साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्टों की लागत 3,500 रूपये निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत यह 6,000 रूपये होगी। 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रतिस्थापन साधारण पासपोर्ट जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह सम्मेलन दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोगों के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम में, चौथा 9 जुलाई को ब्रिस्टल में और पांचवा व अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: कर 5 मिनट और 35 सेकंड का वक्त शालिनी आ चुकी है लेकर छटपटी बातें। जी हाँ, जायके के साथ, क्योंकि आज शत्रुपा में हम बातें करते हैं चटपटी वाली। समझ गए ना कौन सी डिश लेकर आए हैं, क्या खास है, क्या आपको नया बताने वाले हैं और कैसे आप उसे एंजॉय करेंगे, ये सब है सरप्राइज, वो भी एक छोटे से गाने के बाद। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट भी कर लेते हैं और हमारे साथ साथ बनाने की कोशिश करेंगी तो भी बना सकती हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके घर में हो भी सकती हैं। हाँ, तो बस सोचिए क्या है खास और एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना।

12:11 और 5 सेकंड का वक्त हो चला है दोस्तों, और सबकी निगाहें आसमान की ओर है, आज से नहीं कल से है। कई जगह तो बारिश हुई भी है और कई जगह ये बता कर गई है कि हम आ रहे हैं और आई नहीं है, है ना, कुछ इसी तरह का हुआ है। और सच में सभी लोग निगाहें ऊपर लगा कर बैठे हैं कि कब ये आएगी और कब हमें गर्मी से राहत मिलेगी। तो चलिए, मानसून तो आने ही वाला है कहीं।

कहीं पर आ चुका है और उसकी तो बात हम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, लेकिन इस बारिश से रिलेटेड जो बात हम करने वाले हैं कटहल की. कटहल बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है. इसके कई तरीके हैं. किसी को इसकी पकौड़ियाँ पसंद है, कोई कोफ्ते इसके पसंद करता है, कोई ग्रेवी वाली सब्जी बढ़िया सी चटपटी मसालेदार पसंद करता है, कोई किसी तरह से खाता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं, जब कटहल पक जाता है तो उसके अंदर का जो कोया होता है मीठा लगता है, वो भी खाते हैं. लेकिन अक्सर क्या करते हैं हम सभी, हो सकता है आप भी करते हो, जो कटहल की बीज होती है उसे निकाल कर फेंक देते हैं. अरे हम आपकी बात नहीं कर रहे भाई, आप तो कटहल की बीज की भी सब्जी बना लेती हैं. क्या बात है भाई, ऐसा होना चाहिए ना, जो किसी भी सामान का उपयोग अच्छे से कर सके, वेस्ट ना जाने दे कोई भी सारी चीजें. लेकिन आज पता है क्या हम बताने वाले हैं आपको, जो लोग बीज की सब्जी बना लेते हैं तो ठीक है, क्या कोई और भी चीज सोची है कि कटहल के बीज से और भी कोई चीज हम बना सकते हैं? नहीं सोचा ना, तो जरा सोचिए क्या कर सकते हैं और क्या खास किया जा सकता है नए अंदाज में. गाने के बाद

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। टॉल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों हम सभी रेडी हैं ना कटहल की बीज की क्या बनाएंगे? आज हम टिक्कियां बनाएंगे। जी हाँ, और कटहल के खाने के बाद हम अक्सर बीज को फेंक देते हैं और कभी कभी उसको छीलना भी नहीं चाहते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है ना, कभी कभी स्लिप भी कर जाता है और बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं। लेकिन हम क्या करें, जब कटहल बना रहे हो तो उसके मजबूत बीजों को पहले से ही अलग कर लें। और पता है आपको, इन बीजों में बहुत ताकत होती है, शरीर के लिए अच्छे भी होते हैं और अगर हम सेहत की बात करें तो हड्डी भी मजबूत करते हैं, पेट भी ठीक रखते हैं और बच्चों और बड़ों सबके लिए फायदेमंद होते हैं। कैसे बनाना है आपको? बीज को ले लेना है, अलग कर लेना है और प्रेशर कुकर में 2 सीटी तक उबाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, आसानी से उसका छिकला उतर जाएगा। जब छिकला उतर जाए, जो उसका गूदा होगा, जो बीज होगी, उसे अच्छे से मसल लेना है और उसमें थोड़ा सा उबला आलू भी मिलाना है, कटा प्याज आप उसमें मिलाइए, हरी मिर्च मिलाइए, हरी धनिया मिलाइए, काला नमक, गरम नमक, ये सारी चीजें मिलाकर आप उसे गोल गोल टिक्की

का आकार दे सकते हैं और जैसा भी आकार आप देना चाहें, बढ़िया सा हार्ट शेप का भी आकार आप अपने हाथों से उंगलियों से भी आसानी से दे सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, जब आपकी ये टिक्कियां तैयार हो, उन टिक्कियों को तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर, जो भी आप खाते हो, देसी घी पसंद करते हो तो वो आप ले सकते हैं, थोड़ा सा तेल डालिए और टिक्कियों को आराम से तवे पर लाल होने तक सेक लीजिए। और जब आपको सर्व करना है तो भी आप जस्ट लाइक मटर चाट वाला या आलू वाली टिक्की की तरह भी सर्व कर सकते हैं। और नहीं ज्यादा कुछ करना है तो ऊपर से नींबू निचोड़ लीजिए और बस चटकारे लगा। और ये सब करने में पता है मुश्किल से मुश्किल आपको 20 या 25 मिनट्स लगने वाले हैं और कुछ भी अलग से खर्चा नहीं होना है। जी हाँ, जो सब्जी लाए हैं, जो आप हटा देते थे, उसी का ही बनाना है। और थोड़ा सा और कुरकुरी, उसे कुछ और बनाना है तो भुना चना होता है ना, उसे पीस कर आप उसमें मिलाएंगे ना, तो जो टिक्कियां हैं वो और कुरकुरी और टेस्टी हो जाएंगी।

11:26 का वक्त शालिनी आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में, जो कि आप सभी सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर। क्या है धड़कन लखनऊ की? जी हाँ, तो अभी आपने कटहल के बीज की टिक्कियां बनाना सीख लिया है। पसंद आई ना? टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा ना? इस स्माइल के साथ जब आप यस बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, जिनको कटहल की टिक्कियां नहीं पसंद आई और जिनको पसंद आई, दोनों के लिए हम अब नेक्स्ट चीज और एक बताने वाले हैं। वो क्या है? वाटरमेलन। अब आप सोचेंगे तरबूज के बारे में क्या ही बताएंगे, उसको तो हम लाते हैं और उसका तो यूज हम हर तरह से करते हैं और खाते हैं, मजा आता है। हाँ, दुख तो तब होता है जब हमारा तरबूज लाल नहीं निकलता है ना। तो चलिए, अच्छा क्या करते हैं, तरबूज की हम बीज को भी सुखा कर रख लेते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका गूदा तो हम खाते ही खाते हैं, लेकिन अक्सर हम उसका छिकला फेंक देते हैं। अक्सर क्या, हमेशा ही फेंक देते थे। तो अब क्या करना है आपको? अब आप सोच रहे होंगे कि शालिनी के दिमाग में न जाने क्या चल रहा है, अब क्या चीज बताने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि हम उस तरबूज के छिकले की सब्जी आपको बताने वाले हैं जो अक्सर आप फेंक दिया करते थे। जी हाँ, उसके छिकले की सब्जी कैसे बनेगी, क्या होगी, बहुत ही टेस्टी, लेकिन ये सारी चीजें इस प्यारे से गाने के बाद।

0: कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

0: 4-2-4-2
1: ओ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 लो अभी फोन लगाता हूँ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 पर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे तरबूज की और तरबूज के छिकले की सब्जी की। तो अब क्या करना है आपको? जो अच्छा, पहले हम बता दें कि तरबूज के छिकले की सब्जी से आपको क्या फायदा होगा। आपको पता है ये गर्मी में हमारे शरीर को ठंडा रखता है और इसमें बहुत सारा पानी होता है, लू से भी बचाता है और जो रक्तचाप है उसे भी ठीक रखता है। और कैसे बनाना है अब आपको हम बताने जा रहे हैं। तरबूज का जो छिकला लेते हैं, जो उसके ऊपर का हरा या काले रंग का, जो भी जिस कलर का आपने तरबूज लिया है, उसका छिकला हटाना है। यानी कि जो लाल रंग से और ग्रीन या ब्लैक कलर के बीच का जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसे निकालना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े सफेद हिस्से के काट के रख लेने हैं। और उसके बाद क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लिया आपने, कढ़ाई ली और उसमें आपने जो भी आप खाने में ऑयल इस्तेमाल करते हैं या घी इस्तेमाल करते हैं वो आपको डालना है। गर्म होने पर आपको तड़का लगाना है जीरे का, हींग का और हरी मिर्च का। और इसके बाद जो आपने तरबूज के छिकले के टुकड़े काट के रखे हैं उसे उसमें डाल देना है।

हल्दी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी डाल दीजिए और साथ ही साथ नमक डालना है और 10 मिनट तक ढक कर पकाना है और उसके बाद आमचूर भी आप उसमें डालिए। तो देखिए ये चटपटी सब्जी आपकी लौकी की तरह नजर आएगी। जी हाँ, और क्या करना है, समय इसमें आपका पता है मुश्किल से 15 मिनट लगना है। और अगर और टेस्टी बनानी है, सब्जी को थोड़ा सा गाढ़ा लुक देना है, तो उसमें आप बेसन को भूनकर मिला सकते हैं। तो बस एक बार ट्राई करके देखिए और हाँ, सर्व करने से पहले उसमें हरी धनिया ऊपर से डालना बिल्कुल मत भूलिएगा।

दोस्तों आरा, अब हम आपको बताने वाले हैं चटनी के बारे में। आपको कौन कौन सी चटनी पसंद है? इमली की चटनी पसंद है, पुदीने की चटनी पसंद है, कच्चे आम की चटनी पसंद है, टमाटर की, लहसुन की, पुदीने की, सब अलग अलग फरमाइशें होती हैं ना। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं कुछ थोड़ी सी अलग प्रकार की चटनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कद्दू के बीज की चटनी। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से ले आए। ये भी हमने सोचा, अक्सर हम सभी लोग कद्दू जब काटते हैं

उसके जो बीज होते हैं वो फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो बीज होते हैं कद्दू के, ये नींद अच्छी लाने में मदद करते हैं। गर्मी में जब रात में आपको नींद नहीं आती है तो कद्दू की चटनी, बीज की चटनी खानी चाहिए। जी हाँ, ऐसा हमारी दादी और नानी भी कहा करती थी। लेकिन ये बात है, आपको पहले इसका इस्तेमाल करना होगा, देखना होगा खा के, उसके बाद आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ ये तनाव भी कम करती है। अब करना क्या है, जब आप कद्दू की सब्जी बना रहे हो उसके बीजों को निकाल लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और धो कर धूप में 2 घंटे सुखा लीजिए। जब ये बीज सूख जाए अच्छे से तो आपको क्या करना है, आपको कढ़ाई पे या तवे पे इन्हें भून लेना है बिना तेल डाले। जी हाँ, जब ये कुरकुरे भून जाएंगे उसके बाद आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है। क्या करनी है, वो भी आपको सिलबट्टे पर पीसना है। इसे मिक्सी में पीसी हुई ये काम नहीं आएगी, स्वाद नहीं आएगा। तो बस सिलबट्टे पर लहसुन ले लेना है आपको, 4-5 कली ले लीजिए उसकी। हरी मिर्च ले लीजिए, हरा धनिया, नमक, नींबू का रस और जो आपने बीज भून के रखे हैं उन्हें सबको एक साथ पीस लीजिए। और उसके बाद ऊपर से एक छोटा चम्मच सरसों का तेल भी मिला लीजिए। और अगर और स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें काला नमक भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। फिर देखिए क्या चटपटी चटनी बनी है। वाह, क्या बात है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

11:55 हो चले हैं दोस्तों। तो आज आपने क्या क्या सीखा? कटहल के बीज की टिक्की जो ताकत के लिए बहुत अच्छी है, दूसरा तरबूज के छिकले की सब्जी जो कि गर्मी से बचाने के लिए बहुत अच्छी है, और फिर कद्दू के बीज की चटनी जो कि अच्छी नींद के लिए बहुत अच्छी है। और इन तीनों को हम सभी अक्सर फेंक दिया करते थे, पर अब कभी नहीं फेंकेंगे क्योंकि इसमें स्वाद भी है और सेहत भी। बस इसी के साथ शालिनी इस प्रोग्राम को करती है यहीं पर वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम हो छुपी तेरी बात में फिर आपके हम साथ रहेंगे, और अभी हम पूरा आपके साथ हैं शाम 4 बजे तक।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान से सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और सरकारी सेवाओं में भी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए अपना समर्पण प्रेरणादायक है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन अमिस्तात शुरू किया था। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। 31 में थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीकी से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हो। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में संचारी बीमारियों पर लगाम कसने के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। यह अभियान पूरे जुलाई महीने तक चलाया जाएगा। इसके तहत 11 से 31 जुलाई तक घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए दस्तक अभियान की भी आयोजित होगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डेंगू, मलेरिया और दिमागी बुखार जैसी बीमारियों को खत्म करना है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। पूरे जून महीने

महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए हैं, या पिछले वर्ष जून के मुकाबले 30% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, या पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार जून में हर दिन औसतन 75 करोड़ 70 लाख यूपीआई लेन देन हुए हैं। यूपीआई अब दुनिया के 8 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। इनमें से संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: एक बजकर 4 मिनट और 24 सेकंड का वक्त, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ओठों पे तेरी बात, जी हाँ, आपकी ही बात होगी हमारे ओठों पर। और क्या खास बात आज हम सभी करने वाले हैं पता है, जिसका हम सभी को है बेसब्री से इंतजार, तो बस करने वाले हैं आज हम उसी की बात। मानसून का स्वागत आप कैसे करने वाले हैं? जी हाँ, जो आ रहा है, चल चुका है, कहीं कहीं पर पहुंच चुका है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी बता कर गया है कि बस हम आने ही वाले हैं ना। टिप टिप करती बूंदें आई थी, कहीं कहीं पर दिखी थी, तो बताइए भाई, हर एक मौसम का हम स्वागत का की तैयारी पहले से करके रखते हैं, चाहे उसकी अच्छाइयां हो चाहे उसकी बुराइयां हो। तो आप इस मानसून का स्वागत कैसे करने वाले हैं, बस इसे ही आपको बताना है। और कहां पर? FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल कर देना है फटाफट।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दोस्तों 1:09 हो चले हैं और अब से कुछ देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। रियासती हुकूमत ने मुलाजिम असातिज़ा के लिए अलग से टीचर अहलियत टेस्ट TET कराने का फैसला किया है। UP TET 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल इस सिलसिले में अफसरान को वाज़ह हिदायत दी। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने कल से 4 जुलाई तक मुनक्किद हो रहे UP TET 2026 इम्तिहान की दयानतदारी और शफाफियत व उम्मीदवारों की सहूलियत को यकीनी बनाने पर खसूसी जोर दिया। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने UP TET 2026 के इम्तिहान में शिरकत कर रहे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में मुलाजिम असातिज़ा को खसूसी छुट्टी देने का भी फैसला किया है। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने बोर्ड के इम्तिहानात में बेहतरीन कारगर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को लैपटॉप और ग्रांट के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि हुकूमत रामपुर समेत रियासत के रूहानी विरसे के मकामात को जिंदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर इलाके में तरक्की को मजीद मजबूत करेगा।
3: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना, हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
2: रामपुर के बाद वजीर आला ने बरेली में तरक्याती काबों और अमन अमान का जायजा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कारपोरेशन की वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और रोजी रोटी मिशन देही VBG राम जी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो गया है। इसके मुल्कगीर निफाज की माकबल शब पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी अहल देही मजदूर एक दिन के लिए भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनासिब माली वसायल दस्तयाब करा दिए गए हैं, अमल दरामद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार है और चल रहे काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। जनाब चौहान ने कहा कि 125 दिन की तनख्वाहदार मुलाजमत की बढ़ाई गई गारंटी देही माश को मजबूत करेगी। ये एक्ट हर एक अहल देही कुनबे के लिए कानूनी तनख्वाहदार रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करता है। मुतादी बीमारियों पर काबू पाने की मुहिम आज रियासत के तमाम अजला में शुरू हो रही है। इस मुहिम के तहत तकरीबन एक दर्जन सरकारी महकमे पूरे महीने में मुतादी बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत और मुनज़्ज़म करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने देही इलाकों के शहरियों को राहत फराहम करते हुए एक अहम कदम उठाया है। अब रियासत भर के तमाम गाँव सेक्रेटरीटों में लेखपाल बाकायदगी से दस्तयाब होंगे। इस कदम का बुनियादी मकसद गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप के अहद को पूरा करते हुए रेवेन्यू सर्विसेज को आसान, तेज़तर और ज़्यादा शफाफ बनाना है। इस हुकूमती फैसले से देही इलाकों के शहरियों को अब गैर ज़रूरी तौर पर छोटी और बड़ी रेवेन्यू खिदमात के लिए तहसील हेडक्वार्टर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आज से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर के नाम से रियासत गिर मुहिम शुरू कर रहा है। इस मुहिम में दफ्तर सतह से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल गाड़ियों के लिए मैनेजरों और प्रिंसिपलों को नोटिस या फोन के जरिए अलर्ट किया जाएगा कि वो जुलाई के पहले हफ्ते तक 100% स्कूली गाड़ियों का फिटनेस कराएं और दुरुस्त परमिट हासिल करें। मानसून रियासत के तकरीबन तमाम अजला में पहुंच चुका है। मानसून की बारिशों के आगाज से गर्मी की शिद्दत से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर समेत कई अजला में कल से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होते शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
6: समझे जनाब अली।
5: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 1:20 और 57 सेकंड हो चले हैं, मेल आ चुका है नाजिम उस्मानी जी का है और महमूदाबाद सीतापुर से लिख रहे हैं ये कि हम मानसून का वेलकम मानसूनी बारिश में नहा कर करेंगे। वाह क्या बात है। और किसका सुल्तान रजा जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से इन्होंने किया है मेल हमें, रजा जिशान और कई सारे लोगों का नाम इन्होंने लिया है और मानसून की सारी तैयारियां पूरी हैं, पेड़ लगा दिए हैं, जमीन में गड्ढे खोद दिए हैं पानी इकट्ठा करने के लिए, अपने घर पर छत पर ऊपर पन्नी भी डाल दी है और छाता मंगा लिया है पापा से और एंजॉय करेंगे हम पूरा मानसून। और पूरा मानसून क्या वक्त, बरेली में भी बारिश हो रही है। अच्छा आपने इस वक्त बरेली में भी बारिश हो रही है लिखना चाहिए था और बहुत अच्छे से आप स्वागत कर रहे हैं मानसून का। और मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भी मेल आया है मोहम्मद फरमान का, लेकिन जो आपने मेल किया है वो हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है। और ये अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी,

का मेल आया, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, लेकिन जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो आपने लिखकर ही नहीं भेजा कि आपने मानसून का स्वागत आप कैसे कर रहे हैं या करने वाले हैं। अच्छा, ये प्रवीण जी का मेल आ गया है कि प्री मानसून तो आ गया है और बरसात में भीग भी लिए हैं, बस ये मच्छर बहुत आ रहे हैं। चलिए, उनके लिए आपको एहतियात बरतनी है, लोगों और लोगों को भी बताना है कि क्या सिटी मेल आ चुका है। इन्होंने लिखा है कि मानसून ने कई राज्यों में दस्तक दे दी है, मानसून की पहली बौछारें आज चंडीगढ़ को भिगो रही हैं। हम पहली बारिश को घर बने मंदिर में ही मानसून के लिए पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और दुआ करते हैं कि ये बारिशें रहमतों से भरी हो और किसी का कोई नुकसान ना हो। पिछले साल हिमाचल और पंजाब में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ था, इस बार ना हो, पर चेहरे पर मानसून आने से मुस्कान हो, मायूसी नहीं। बिल्कुल सही बात है और इसी तरह की दुआ विशेज हमारी भी है आपके साथ। और अब सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक और आप सभी के ईमेल का है हमें इंतजार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL Gold।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

हरियाली का आनंद लेकर कर रहते हैं और कीड़े मकोड़ों की थोड़ी परेशानी है और रिमझिम बारिश के बीच दिल बस एक ही बात कहता है, पता है, बहुत खास सी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं कनिका जी ने और जिसके लिए लिखी हैं शायद उन तक पहुंच जाए, वो भी इस वक्त हमारा रेनबो सुन रहे हो। ये लिखती हैं कि दिल बस एक ही बात कहता है, मौसम की पहली बारिश में आपकी कमी बेहद खलती है, देश की हिफाजत में दूर खड़े पिया, ये दूरी ही हमारे प्यार को और गहरा करती है। देखिए, हमने आपकी बात आपके पिया जी तक पहुंचा दी है। वकील अहमद का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें कहाँ से, जिला सीतापुर से मेल किया है और ये लिखते हैं कि मानसून का स्वागत ये खेत

और इन्होंने हमें कहाँ से, जिला सीतापुर से मेल किया है और ये लिखते हैं कि मानसून का स्वागत ये खेत में धान लगाने की तैयारी के साथ करने वाले हैं, बस बारिश का इंतजार है। और लिखना था कि खुश हैं तेरे, अच्छा बहुत सारी बातें आप लोग लिख डालते हैं, समझ में नहीं आता है कौन सी बात हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड है। और मेल आ चुका है रामराज राजू भानु जी का है और इन्होंने हमें रायबरेली से मेल किया हुआ है और ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ मानसून अभी आया नहीं है, मानसून आता है तो बारिश होती है और हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बादल छाए हैं, मौसम ठंडा है। तो भाई यही तो मानसून है, बस आने वाला है, आप उसका स्वागत कैसे करने वाले, कैसे इंजॉय करेंगे इस मानसून को, यही तो बताना है। और अब सुनिए प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद और भी करते हैं मेल को शामिल।

1:38 और 48 सेकंड का वक्त, प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में बात चल रही है आज कि हम सभी मानसून का स्वागत कैसे कर रहे हैं या करने वाले हैं, जहां पर अभी नहीं पहुंचा है, और सभी बड़ी ही खुशी के साथ, मुस्कान के साथ अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। और पता है, जब आप कोई बात अपने दिल के लिख कर भेजते हैं ना, तो उसे हमें एहसास होता है आपकी खुशी का। श्वेता ने हमें मेल किया है, मोहित अर्ना हरिद्वार से, और लिख रही हैं कि कुछ इस तरह से कल मानसून ने हमारे यहाँ दस्तक दी है और झमाझम बारिश, सुबह तक बारिश होती रही है और हमने मुस्कुराकर हंसकर मानसून का स्वागत किया है और आज सुबह चाय के साथ बना लिए हैं प्याज आलू और हरी मिर्च के गर्मा गर्म पकौड़े और हरी चटनी के साथ खाया है और जोरदार धमाल हुआ है सुबह का। और इस मौसम में घूमना फिरना तो बेहद ही अच्छा लगता है। हम घूम भी रहे हैं, आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, सुहाने मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं और आने वाले रेनी सीजन के सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग, हैप्पीनेस और बहुत सारी शुभकामनाएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और अपना खास ख्याल रखें औरों का भी। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और जिस तरह से आप बता रही ना मुस्कुराते हुए, आपकी जो मुस्कुराहट है ना वो यहाँ पर हमें दिख रही है। और किसका मेल आया है, ये मुनेश राज्य का है, भानपुर हरौरा लखीमपुर खीरी से है और इन्होंने दो लाइनें भी लिखी हैं। घमंड न कर, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। बहुत अच्छी बात है। और जी हाँ, कोई बात नहीं, आपने आज के मुद्दे पर जो बात कहना चाहते हैं बिल्कुल कहिए, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आज ये कहना चाहते हैं कि बारिश का तो हम सभी लोगों को हर वर्ष इंतजार रहता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि बारिश के पानी का संरक्षण या जल निकासी किस ढंग से करें? तो हम यहां तक भी बात चाहते थे कि लोग हमें बताएं, कहें, केवल यही नहीं कि हम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से स्वागत किया है, सारी चीजें, लेकिन उस बारिश का जो पानी है उसका संरक्षण और जो पानी भर जाता है आपके यहाँ उसकी निकासी का क्या तरीका अपनाने वाले हैं, ये बात मुनेश राज जी ने हमें तक पहुंचा दी है। और इन्होंने लिखा है कि अगर हम जल को संरक्षित नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, तो कल को बादल भी नहीं बरसेंगे। इसीलिए हम सभी को जागरूक होना है, बारिश का पानी अपने रहन सहन के आसपास इकट्ठा ना होने दें, इसे खेतों या तालाबों की तरफ मोड़ दें। इसके दो फायदे हैं, मच्छर और बीमारियां नहीं पनपेंगी और फसल और तालाबों के जीव जंतुओं को भी फायदा मिलेगा। और ये बारिश का स्वागत दिल से करने रहे हैं और हमारे किसान भाई की नजरें आसमान की ओर ही लगाए बैठे हैं, कब झमाझम बरसे और खेतों की प्यास बुझे। बहुत अच्छी बातें आपने हम तक लेकर पहुंचाई हैं। और किसका मेल है, ये रामेश्वर कठेरिया जी का मेल है, उमा कांति और कमलेश के साथ में इन्होंने हमें मेल किया है और ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई ये कानपुर देहात से, इसका मतलब वहां तक भी मानसून पहुंच गया है। एमएन नवाब, अगर आप हमें सुन रही हैं तो हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी और आप भी अपनी बात हम तक लिख कर भेज दें। और कोई बात नहीं, श्वेता आपने मेल बहुत अच्छा लिखा था। गुलफ्सा सिद्दीकी का भी मेल संडीला से आ गया है और ये कह रही है, रही बात मानसून के स्वागत की, तो अपने घर में छत पर सफाई की है, हर चीज साफ किया है ताकि पानी ना भरे और फिर खूब नहाना बारिश के पानी में। बहुत अच्छी बात है, छत की सफाई बहुत जरूरी है, तो जिससे आपको कई सारे

चीजें पता चलती है। एक तो कहीं से पानी नीचे बह तो नहीं रहा है, जो छत से पानी की निकासी की जगह है वो ऐसा तो नहीं क्लोज तो नहीं है, और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें छत पर तो नहीं पड़ी है जिसमें पानी भरा रहे और कल को उसमें मच्छर पनपे। होता है कि कौन सा टॉपिक हम चूज कर रहे हैं और जिससे आपकी बातें हमें पता चलती हैं और आपकी ही बातों से लोगों को भी बहुत कुछ पता चलता है। दोस्तों 1:43 और 33 सेकंड हो चले, आप सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।

0: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: करियर पर है ध्यान,
2: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
1: पॉजिटिव है फैशन,
2: क्रिएटिव है पैशन,
1: टेक्नोलॉजी में रुचि,
2: बने पर्सनालिटी ऊंची,
1: फॉलो करें ट्रेंड्स,
2: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
1: ओनली ऑन यूथ वेव,
2: यूथ की बात यूथ के साथ,
1: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
2: धड़कन लखनऊ की।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बजकर 53 मिनट और 26 सेकंड हो चले हैं, लेकिन घबराइए नहीं, जिनके मेल अब तक पहुंचे नहीं हैं जरूर पहुंचेंगे। एम ए नवाब का भी मेल संडीला से आ चुका है, इन्होंने कल मानसून का स्वागत कर लिया है, छत की सफाई की है और साथ ही साथ बारिश में नहाया भी है। अच्छा, दादू जी की भी बात नहीं मानी गई है, चलिए कोई नहीं, बारिश है तो स्वागत तो बनता ही है। तालिब अंसारी का भी मेल आ चुका है बाराबंकी से, इन्होंने लिखा है कि हम सोच रहे थे कि सब तरफ बारिश होने लगी और हमारी तरफ नहीं हुई, लेकिन अभी, मतलब जब इन्होंने मेल किया है, हमें भी 5 मिनट पहले अंधेरा हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई है और ये बारिश का स्वागत की तैयारियां इन्होंने पहले से कर ली थी, छत की साफ सफाई कर ली थी और सबसे खास बात ये कि जल की निकासी कहां पर कैसे की जाए ये इन्होंने सोच लिया था और काम करके रखा था। नीरज नहीं, अच्छा ये पिंकी रिंकी का भी जगदीशपुर शिवगढ़ से मेल आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि हम लोग एकदम चकाचक हैं। अच्छा, क्या बात है, शब्द कहाँ से आते हैं, और हमारे गांव में जबरदस्त बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है। अच्छा, कैसे स्वागत कर रही हैं, इन्होंने ये बात नहीं बताई है। ये मेल आ चुका है उर्फी खान का बुलंदशहर से, हमारे यहाँ सुबह 5 बजे से बारिश हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे तो बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता है फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है, ये तो खास बात है ही है इसकी। और जगदीश जी का जस्ट अभी मेल आया है हमारे पास, और ये कहां से, हिंगड़ी से ये हमें मेल कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज की बात की जा रही है वो कोई भी चीज इन्होंने लिखी नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ सारे मेल पहुंचा दिए गए आप सब तक, और अब बारी इस प्यारे से ट्रैक की, नेक्स्ट प्रोग्राम हॉट मेल, जिसमें आपकी ही पसंद के गाने आप तक पहुंचाती है शालिनी। और भाई, एक बार मेल करिएगा और बढ़िया बढ़िया से गाने पसंद करिएगा जो कि एकदम मानसून से रिलेटेड हों।

0: across the country for the exemplary professionalism and compassionate service to humanity.
1: On the occasion of Doctor's Day, I extend my sincere appreciation and heartfelt gratitude to the medical fraternity for its unwavering dedication, exemplary professionalism, and compassionate service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives, and uphold the highest standards of patient care. Your selfless commitment and resilience continue to inspire the nation and strengthen our collective pursuit.
0: In FIFA World Cup, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Quiles scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of Army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता

0: पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेनदेन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी

0: डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
0: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: आई एम प्लीज टू नो दैट दिस यूनिवर्सिटी इट्स कमिटमेंट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशली टू दोज ऑन क्वालिटी एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: India's engagement
4: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर

पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

9:30 बाबू अंसारी का मेल देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से आ चुका है और कुलदीप फैज अंसारी महेंद्र दीपेन इनका सबका नाम इन्होंने लिखा है और कुलदीप कुमार जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने ऊंचा हार से हमें मेल किया है। अफसार जी का भी मेल आ गया है और खरेला सीतापुर से इन्होंने लिखा है और अभी हमें ये मुंबई से सुन रहे हैं और ये सिलाई का काम करते हैं। थैंक यू हमारा साथ देने के लिए, आप वहाँ से भी हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर जी का भी मेल आ चुका है और किसके साथ में है ये मन्नत और भरत साथ में है, जालंधर से इन्होंने हमें मेल किया है। शाहरुनूर अंसारी फरियाद के साथ में जिला बरेली मचकली से हमें मेल कर रहे हैं और ये मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुन निशा सविस्ता के साथ में इन्होंने मेल किया है और अब्दुल गफ्फार जी का भी मेल अब्दुल हक टावर के साथ में खंडवा से आया है। बोधराज कुरवाल जी का मेल कमला रानी और गीतिका के साथ आया है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज जी आपका मेल शामिल किया जा चुका है और हमें लगता है आपने अपनी पसंद का गाना भी सुन लिया लेकिन उसके बाद भी आपने कई सारे ईमेल हमें कर डाले हैं। ये जोन डिक्रोस्टो रोजी पर्ल विलेस का भी मेल जनकपुरी सहारनपुर से आया है। रामेश्वर कचहरिया उमा कांति कमलेश के साथ में मुंगिसापुर कानपुर देहात से हमें मेल कर रहे हैं। जावेद अख्तर जी का भी मेल कहाँ से आया है, हमेशा की तरह मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं। शमशुल कमर राही और बेगम रुखसार भी हैं, किसी भी गीत में इनका मेल शामिल कर लिया जाए। कितनी प्यारी सी रिक्वेस्ट की वाली, जब रिक्वेस्ट होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तलहा जहां नाज और फरह जहां नाज का मेल आ चुका है और इन्होंने हमें सीतामढ़ी बिहार से मेल किया है। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साविर राही के साथ में आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें मेल कर रहे हैं और हरजिंदर चिंदा जसवीर जस्सी के ने हमें नथाना पंजाब से मेल किया है। संजय जिंगिया और नमन अपार के साथ में बागपत उत्तर प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं। मोहम्मद आजान का भी मेल आ चुका है। मोहम्मद

है साथ में, और ये कहाँ से आपने हमें मेल किया है? ऐसा कुछ आपने नहीं लिखा है, गाने की फरमाइश जरूर की है। और सुरेश नारंग जी का भी मेल आया है आशा के साथ सहारनपुर से, और बढ़िया से गाने की फरमाइश की है आपने। चलिए अभी सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

बजकर 38 मिनट और 45 सेकंड राजेश कुमार जी का मेल आ गया है। कैसे हैं हम? एकदम बढ़िया हैं। और राजेश, सपना मान्या के साथ में अम्बेडकर नगर ताल कटोरा नियर बालाजी मंदिर लखनऊ से ही मेल कर रहे हैं। और अच्छा, बढ़िया है। और गाने की फरमाइश की है आपने, कोशिश है राजेश जी अब आपका गाना हम सुना पाए। सरावत से शेख मूसा मोहसिन का भी मेल आ चुका है। खैरियत है सब आपकी भी, आप भी खैरियत से होंगे। मोहम्मद आमिर का मेल शमीम और माहिनूर अंसारी के साथ में करेली बरेली से मेल आया है। किसी भी गीत में मेरा नाम शामिल करें। नबी हसन अब्बासी, शहनाज और नावेद हसन दरवाजा ईठा से मेल किया है। और ढेर सारे मेल नाम इन्होंने लिखे। ओम बगारिया जी का भी मेल आ चुका है। आप लाइव सुन रहे हैं, बिल्कुल आपकी हाजिरी लगा दी है। मेल जैसे जैसे आते रहते हैं वैसे हम शामिल करते रहते हैं। एम के राज का भी मेल भानपुर हरौरा लखीमपुर से आ चुका है। दीपेश वर्मा ने भी ज्योति शिवांश के साथ छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है। स्वर्ण सिंह दलजीत और राजदीप ने ठाकुरवाला से हमें मेल किया है। हीरामणि वर्मा, आपने भी मेल किया, उसके लिए धन्यवाद। पारस मणि पुष्पेंद्र के साथ भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हमें मेल कर रहे हैं। और ये तेज बहादुर यादव ममता अपने बच्चों के साथ मेल कर रहे हैं, गुरुग्राम हरियाणा से मेल कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इंतजार करना अच्छा रहता है। और किसका मेल है? राधे कुमार विद्यार्थी जी ने भी हमें गोकुल चौक गंगजला सरहसा बिहार से मेल सविता और संजय के साथ में किया है। सुनील पाठक जी, आपने भी हमें मेल किया है। और इनके मल्होत्रा परिवार पूरा साथ में है। और मैं शालिनी हूँ, आपने किसी और का नाम लिखा है। और किसका मेल आ गया है पढ़ लेते हैं भाई। एक तो आप ही लोगों में से इतने सारे जब मेल कर दिए जाते हैं ना, तो किसने कौन सा मेल किया है वो खोज पाना बड़ा मुश्किल होता है। सुनील सूर्या ने सर मेल कर दिया है। और जी मल्होत्रा जी का भी हरियाणा से हमें मेल किया है इन्होंने। और से मेल कर दिया है। मनोज बंसल जी का भी हांसी हरियाणा से मेल आया हुआ है। अरविंद कुमार दुबे ने भी मेल हमें कहां से किया है, मिर्जापुर से हमें मेल कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए।

ये नूर आयशा अहमद बागवान इकबाल छोटी बलिया से मेल कर रहे हैं। रियाज फैजान का भी मेल आ चुका है और ये इनके अपने दोस्त टिक्का के साथ में ये हमें मेल कर रहे हैं। सुधाकर जाधव जी का प्रशांत संचित के साथ में जाफराबाद से मेल आ चुका है। विनीत कुमार जी का भी मेल रामगढ़ चीनी मेल सीतापुर से आ गया है। और किसका मेल है, राजकुमार जूझी प्रमोद पुष्पेंद्र का हिसार से मेल आया है। जितेंद्र नामदेव का मेल भी आ चुका है। शहडोल मध्य प्रदेश से हमें आरोही के साथ में मेल कर रहे हैं। और इरफान गौरी जी का भी मेल आया है। और लहरपुर सीतापुर उत्तर प्रदेश से ये हमें मेल कर रहे हैं। विजय मोहबिया जी ने भी मेल कर दिया है। संतोष जी का भी मेल आया है और इन्होंने विनोद खड़सिये के साथ महाराष्ट्र से हमें मेल किया है। और किसका मेल रह गया भाई, रहना किसी का मेल नहीं चाहिए बस। तो चलिए तब तक खोजते हैं कौन सा मेल रह गया। ये गाना आप सबके लिए।

2:48 का वक्त हो चला है दोस्तों, और ढेर सारे ईमेल्स बराबर आते जा रहे हैं, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आर्यन वर्मा का अशोक वर्मा अर्चना अनुज के साथ में सनावद मध्य प्रदेश से मेल आ चुका है, और

और अब ये गाना सुनने के बाद जहां जहां मेघा नहीं बरसे हैं वो जरूर बरस जाएंगे। और मेल आ चुका है अहमद भाई फूल वाले का मुंबई से इमरान और जूही इकबाल के साथ में, और ये बिट्टू भाटिया रीता रजत के साथ में हरियाणा से हमें मेल कर रहे हैं, और बाकी वही मेल ढेर सारे दोबारा दोबारा आते जा रहे हैं दोस्तों। और 2:55 हो चल रहे हैं, और अब बारी है उस प्यारे से ट्रैक की जो आपकी ही पसंद है, इस गाने इस प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा, सतरंगी दुनिया में रहेगी शालिनी आपके साथ। लेकिन हाँ, 3:30 पर जो सोमवार से शुक्रवार के तक जाता है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, वो सुनना बिल्कुल नहीं भूलना है। 3:30 से 4 बजे तक होगा प्रसारित आज भी।

102.2 पर ये है रेनबो कानपुर और आज के म्यूजिक आर प्रोग्राम के रंग हैं रिमझिम फुहारों के संग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी आरजे आरती ज्योति का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज है 1 जुलाई यानी 1 जुलाई, जुलाई माह का पहला दिन और आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों ने भी, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू ने भी छेड़े हैं दिल के तार। तो शेयर कीजिए वो पहली बात जो छू गई आपके दिल को, वो कॉलेज का पहला दिन, ऑफिस की पहली बात या फिर पहला प्यार। तो देर किस बात की, शेयर कीजिए दिल से दिल तक पहुंचे की ये बात। प्रोग्राम है म्यूजिक कार और जनाब अपनी बात शेयर करनी कहाँ है। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। बढ़ाते हैं इस म्यूजिक का सिलसिला आगे और सुनवाते हैं आपको एक बेहतरीन सॉन्ग। प्रोग्राम है म्यूजिक आर।

है, दस्तूर भी है और आज है 1 जुलाई। और दोस्तों सच में ये रिमझिम फुहारों का भी मौसम हो गया है स्टार्ट। और बरसात का जो मौसम होता है ना, ये सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि होता है, कह सकते हैं, प्यार का मौसम। और दोस्तों प्यार ही नहीं, यादों, उम्मीद और मुस्कान का सबसे सुरीला नाम है बारिश। कहा भी जाता है ना कि बारिश की हर बूंद में छिपी होती है एक नई कहानी, जो दिल से सुन ले वही बन जाए उसकी जिंदगानी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर। जी हाँ, मेरे यानी आरजे आरती के साथ, और आज की थीम है म्यूजिक आर के रंग रिमझिम फुहारों के संग, जिसमें बातें हो रही हैं आपके दिल की, यानी पहली पहली बार।

0: जी हाँ दोस्तों, बरसात की धुन तो यूं ही बजती ही रहेगी और आप बने रहेंगे जी हाँ म्यूजिकल प्रोग्राम के संग। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और बात करते हैं आज की यानी 1 जुलाई की। सो गाइस, आज ही वो दिन है, आज ही वो तारीख है, जी हाँ, जब हम मना रहे हैं डॉक्टर्स डे। तो सभी चिकित्सकों को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हम सभी अपने जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच करा के संतुलित आहार लें, व्यायाम करें और अपने आसपास के चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करें, तभी तो ना डॉक्टर्स डे पर सुनवा रहे हैं आपको डॉक्टर्स की ही बातचीत।
1: गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देशराज गुर्जर, डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में अपने सभी साथी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, जो हम निरंतर दिन रात लगातार मरीजों को स्वस्थ करने के लिए जो मेहनत करते रहते हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि हम अपने सारे लिसनर्स को ये बताना चाहें कि हमारे लिए जो डाइट है वो हमारी डाइट बैलेंस्ड रहनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन कार्ब सबका रेशो संतुलित रहना चाहिए। डेली हमें 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, और यदि हमें कोई एडिक्शन है, चाहे तंबाकू है, चाहे मसाला है, चाहे अल्कोहल है, उसको भी हमें कट डाउन करना चाहिए।
2: मैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर आप सभी को बधाइयां एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और मैं आकाशवाणी का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि कुछ मंच हैं जो डॉक्टर्स को बहुत सम्मान देते हैं, उनमें से आकाशवाणी एक है। और डॉक्टर्स डे के अवसर पर आप, मेरी आप सब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले तो अपने लेवल पर ही रखें। उसके लिए आपको हेल्दी एवं न्यूट्रिशियस डाइट का चयन करना पड़ेगा, और आप प्रतिज्ञा करें कि आपको दिन में कम से कम 1 घंटा अपने लिए देना है, और उसमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आप योगा करें, चाहे जुम्बा करें, चाहे एरोबिक्स करें, और चाहे जिम ज्वाइन करें, चाहे आउटडोर एक्टिविटी करें कोई भी, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तभी हमारा देश आगे उन्नति कर सकेगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
0: तो दोस्तों आज के दिन पर यानी डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को हमारे यानी रेनबो परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम म्यूजिकार के सफर पर, एक कदम और आगे।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर, जिसमें आप सुन रहे हैं, जी हाँ, वो गाने जो दिल को छू लेने वाले हैं, जिनमें है रिमझिम फुहारों की दस्तक।

छा गए हैं काले मेघा पूरे कानपुर में और रिमझिम फुहारों ने भी दस्तक दे ही दी है और फिलहाल अभी अगर नहीं भी हुई है आज तो होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और ये है बात थी काले मेघा की और आज जो बात चल रही है। जी हाँ, आज है 1 जुलाई और हमने आपसे बात की थी दिल की। दिल की यानी जो पहली बात आपके दिल को छू गई, वो कॉलेज का पहला दिन, ऑफिस की पहली बात या फिर पहला प्यार, तो देर किस बात की, शेयर कीजिए। दिल से दिल तक पहुंचेगी आपकी बात हमारे प्रोग्राम के साथ। और दोस्तों, मेल्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं और पहली मेल जो आई है इस बात के लिए वो है गुलाफ्सा सिद्दीकी की। लिख रहे हैं, हेलो गुड इवनिंग मैम, मैं गुलाफ्सा सिद्दीकी सैंडिला से, आप सभी प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हैं। मैं अपनी इंग्लिश टीचर से बहुत डरती थी क्योंकि वो मारती बहुत थी। ओ माय गॉड। फिलहाल टीचर्स तो सभी कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा होता ही है, मेरे ख्याल से सभी की लाइफ में हुआ होगा। फिलहाल आप लिख रही हैं कि वो मारती बहुत थी और बड़ी बड़ी आंखें करके डराती।

करती थी। और इन्होंने साथ ही लिखा है, ये इन्होंने अपने दिल की बात शेयर की है, यानी ये बात इन्हें आज दिन तक याद है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें। फिलहाल दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर, और जिसमें आप बात कर रहे हैं दिल से दिल तक की, और इन्होंने साथ ही शामिल किए हुए हैं दो नाम, नीलू शर्मा और रोशनी रावत। तो प्रोग्राम म्यूजिक आर रिमझिम फुहारों के संग बातें हो रही हैं आपके दिल की, जिसमें आज हम शामिल कर रहे हैं दिल को छू लेने वाली पहली बात। तो दोस्तों क्योंकि आज है 1 जुलाई और ज्यादातर बच्चों का पहला स्कूल का दिन, जी हाँ, छुट्टियों की मस्ती के बाद अपनी समय सारणी को मेंटेन करने का ये दिन होता है ना, जो कि थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, पर दोस्तों से मुलाकात इस दिन को बनाती है खास। और जब दिल की खिड़कियां खुल जाती हैं ढेर सारी बातों के साथ, और साथ ही अगर होने लगे टिप टिप पानी, तो क्या बात है।

जी हाँ दोस्तों, 3:30:32 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक जिसे आप सुन रहे हैं मेरी यानी आरजे आरती के साथ। और बातें बहुत ढेर सारी हैं क्योंकि बातें हो रही हैं पहली बार की। कहते हैं ना दोस्तों, हर राह का सफर किसी न किसी मंजिल की ओर जाता है, और जब नन्हे नन्हे कदम बढ़ते हैं उस डगर पर तो कहते हैं वो बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। जी हाँ दोस्तों, जून का महीना समाप्त होने के साथ ही समाप्त होता है आधा साल, और यह जुलाई यानी नए लक्ष्य तय करने और उसे पूरा करने के जज्बे का महीना। तो गाइस बहुत कुछ खास है क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह से ही शुरू होता है वन महोत्सव यानी पर्यावरण संरक्षण का वो महान उत्सव। तो चलिए हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं आज के इस दिन को।

जी हाँ दोस्तों, ब्लू है पानी पानी, और इस तरह का जो एंजॉय होता है वो ऐसा ही होता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक, जिसमें बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। वैसे दोस्तों, जैसे पहली बरसात की बूंदें मन को राहत दे जाती हैं, ठीक वैसे ही जिंदगी की पहली खास बात होती है दिल की किताब में एक नया अध्याय जोड़ जाती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे बारिश की आवाज हर जगह एक सी होती है, लेकिन उसे सुनने का एहसास हर दिल में अलग होता है। किसी के लिए दोस्तों यह बचपन है, किसी के लिए प्यार, तो किसी के लिए है नई उम्मीद। और एक हमें मेल और प्राप्त हो रहा है, इन्होंने लिखा हुआ है, मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन। लिख रहे हैं, मुझे आज भी अपने कॉलेज का पहला दिन याद है। ये लिखने वाले हैं सौरभ सचान। सौरभ जी लिखते हैं, नए चेहरे, नया माहौल और थोड़ी सी घबराहट, लेकिन उसी दिन बने दोस्त आज भी मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। क्या बात है सौरभ जी, आपने दिल के तार छेड़ दिए, और आपका तहे दिल से शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। फिलहाल आप जुड़े हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर में हमारे साथ 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉन्ग की ओर, और आपको सुनवाते हैं ये बेहतरीन सा सॉन्ग।

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक और मेरी यानी आरजी आरती के साथ। और दोस्तों कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम बीच का जो प्रोग्राम था 5 से 7 मिनट का, वो हम आपको नहीं सुनवा पाए। लेकिन फिलहाल अब एक बार फिर से आप शामिल हैं हमारे साथ प्रोग्राम म्यूजिक आर में। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और हम बात कर रहे थे आज के उस सफ़र की, यानी ये हर राह का जो सफ़र होता है ना, वो किसी न किसी मंजिल की ओर जाता है। और जब नन्हे नन्हे कदम बढ़ते हैं उस डगर पर, तो बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। जी हाँ दोस्तों, जून का ये जो महीना है, ये समाप्त होने के साथ ही समाप्त होता है आधा साल। और यह जुलाई यानी नए लक्ष्य तय करने और उसे पूरा करने के जज्बे का होता है महीना। तो होता है बहुत कुछ खास, क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में भी शुरू होता है वन महोत्सव यानी पर्यावरण संरक्षण का महान उत्सव। तो चलिए हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं आज के इस दिन को और आपको सुनवाते हैं ये बेहतरीन सा ब्लू सॉन्ग। जी हाँ,

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर, जिसमें जुड़े हैं आप हमारे साथ 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। और दोस्तों, जैसे पहली बरसात की बूंदें मन को राहत दे जाती हैं, ठीक वैसे ही जिंदगी की पहली खास बात दिल की किताब में एक नया अध्याय जोड़ जाती है। होता है ना ऐसा? और ठीक वैसे ही बारिश की आवाज़ जो होती है, मैं कह रही थी कि हर जगह एक सी होती है, बट उसे सुनने का जो एहसास होता है हर दिल में अलग होता है। किसी के लिए ये बचपन है, किसी के लिए प्यार, तो किसी के लिए है नई उम्मीद। जब बात चली है उम्मीदों की, तो बताते हैं कुछ ऐसी ही ख्वाहिश, या कह सकते हैं एक ऐसी ही मेल हमारे पास आई है। ये मेल है सिद्धि की, लिख रहे हैं, नमस्कार आरजी आरती ज्योति जी, आपको भी नमस्कार। मेरे लिए पहली बारिश हमेशा बहुत खास होती है। जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरती है, मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को बहुत अच्छी लगती है। और मुझे बारिश में भीगना कागज की नाव चलाना, गर्मा गर्म पकौड़े खाना बहुत पसंद है। पहली बारिश आते ही मन खुश हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे मुझे चारों तरफ, या कहें कि प्रकृति ने नई शुरुआत की हो। और साथ ही उन्होंने लिखा है, किसी खूबसूरत मौसम पर एक प्यारा सा गीत सभी श्रोताओं को जरूर सुनवाइए। तो बिल्कुल, हम गीत तो सुनवा ही रहे हैं आप सभी को। फिलहाल प्रोग्राम में बात चल रही है पहली, जो आपके दिल को छू लेने वाली पहली बात ऐसी हो, वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी है, एक बार आपको अगेन बता देती हूँ कि हमारा ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। तो बस यूं ही शेयर करते रहिए हमारे साथ अपने दिल की बात, और हम आपके ऊपर बरसा रहे हैं रिमझिम फुहारे। और अब आ रहा है आपके लिए बेहतरीन सा सॉन्ग, सो एंजॉय दिस।

जुज्म ना माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने

जी हाँ दोस्तों, मेरी भी जो पहली नज़र है वो बनी हुई है आज की डेट पर। जी हाँ, बात हो रही है आज की यानी पहली जुलाई की। तो दोस्तों, पहली पहली बातें जब शेयर की जा रही हैं तो पहली जुलाई की बातें भी खास ही हो जाती हैं। तो क्या है आज के दिन की वो खास बातें, शेयर करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज यानी 1 जुलाई से कॉमर्शियल सिलेंडर औसतन 180 रुपए सस्ता हो गया है। और इसके साथ ही डीजल की बिक्री पर जो लिमिट थी वो 1 जुलाई से हट गई है और इससे आम वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टर्स जरूरत के अनुसार जितना चाहें उतना डीजल सीधे पेट्रोल पंपों से भरवा सकते हैं। और गाइस, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस में भी बढ़ोतरी कर दी है जो 1 जुलाई से हो रही है लागू। वैसे ये जो चेंजमेंट हो रहा है ये काफी टाइम बाद हो रहा है। इससे पहले ये 2012 में चेंजमेंट हुआ था और इस नेक्स्ट अब जो हो रहा है वो हो रहा है यानी आफ्टर 14 इयर्स ये जो चेंजमेंट है, पासपोर्ट के फीस में जो बढ़ोतरी की गई है वो 14 वर्षों के बाद। और एक और है खास बात आज की। जी हाँ दोस्तों, रखनी है आपको सावधानी, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर देना होगा अब दोगुना जुर्माना। यानी न्यूनतम जुर्माना जो था 250 रुपए से बढ़ाकर अब कर दिया गया है 500 रुपए। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात है आज की, यानी UIDAI ने 1 जुलाई से आधार कार्ड पर ईमेल एड्रेस को अपडेट कराने के लिए लगने वाली जो फीस थी वो यानी 75 रुपीस को हटा दिया है। यह अगले 6 महीने तक यानी 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त रहेगी। तो ये तो थी बातें आपके काम की पहली तारीख की। तो अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आपको सुनवाते हैं एक बेहतरीन सा सॉन्ग।

हाँ दोस्तों, आप जुड़े हैं हमारे साथ, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिकार, और आप हैं हमारे अपने दिल से जुड़े हुए, जो जुड़ते हैं हमेशा हमारे दिल से। 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर, रेनबो कानपुर पर, और अब बातें करने का जो वक्त है वो धीरे धीरे बीतता जा रहा है और हम आप पहुंचे हैं अपने अंतिम पायदान पर, और अंतिम पायदान यानी हमारा नेक्स्ट सॉन्ग जो होने वाला है लास्ट सॉन्ग। तो जल्दी से सुनवाते हैं आपको इस लास्ट वाले सॉन्ग को, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, प्रोग्राम ये है म्यूजिक आर। दोस्तों, इसी सॉन्ग के साथ मुझे यानी आरजे आरती को दीजिए अब प्रोग्राम म्यूजिक आर से इजाजत। नमस्कार।

102.2 पर ये है रेनबो कानपुर और मैं हूँ आपके साथ आरजे आरती ज्योति। प्रोग्राम आपकी पसंद में आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत है।

तो दोस्तों आ रही है ढेर सारी जो मेल हैं उनका सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया है और प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत कर रही हूं मैं आरजे आरती ज्योति। और बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में, यानी कौन है हमारे जो पहले मेल करने वाले जो लिसनर हैं वो कौन है, देखते हैं। पहली जो मेल आ रही है वो आ रही है मास्टर अशोक कुमार वर्मा जी की। जिला खरगोन सेनावद एमपी से ये मेल कर रहे हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बुराना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, मुकेश जगताप जी।

दोस्तों हमारी जो अगली मेल है वो आ रही है पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब की ओर से, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। बबलिश पवार है, डैनी पवार है, मनीष पवार है, जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रोग्राम आपकी पसंद में। और इसके बाद अकरम हुसैन प्रिंस जी की भी जो मेल है वो हमें प्राप्त हो रही है, लिख रहे हैं, नमस्कार, अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमारी मेल को शामिल करें, मैं इंतजार में हूँ। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज जो शिक्षिका हैं, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। साथ ही उन्होंने लिखा है, हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दें। तो जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे प्रोग्राम आपकी पसंद में, जो है आपका प्रोग्राम, आपकी पसंद के गीतों का प्रोग्राम। तो आपको सुनवा रहे हैं सबसे पहले नीलकमल फिल्म का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, ये आपका प्यार ही है जो आप कनेक्ट होते हैं हमारे साथ यानी रेनबो कानपुर के साथ 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। और प्रोग्राम होता है आपका वही आपका मनपसंद प्रोग्राम आपकी पसंद, जिसमें जुड़े हैं इस वक्त आप हमारे साथ। और अगली जो हमारी मेल है वो आई है सतीश अनेजा जी की। दोस्तों अनेजा जी लिख रहे हैं, नमस्कार आरती बहना जी। बहना जी जी वेल, जो आपने लिखा वही मैंने पढ़ा। फिलहाल इन्होंने साथ में आगे लिखा है, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, रेनबो कानपुर के लिए बेशुमार मोहब्बतें, थैंक यू, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने बड़ी बेहतरीन सी लाइंस भी लिखी हैं और अभिनंदन भी किया है और साथ ही फरमाइश की है रिम झिम गिरे सावन इस गीत की फिल्म मंजिल से। ये मेल लिखने वाले जो श्रोता हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी जुड़ी हैं हमारे साथ। और इसके साथ ही एक और जो मेल है ना सिर्फ निसार अली जी की हमें प्राप्त हो रही है, लिख रहे हैं, आदाब नमस्कार आरजे जी, आपको भी हमारा नमस्कार। और इन्होंने लिखा है साथ ही, हमें भी किसी भी गीत में शामिल करें, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, आपका हर पल खुशियों से भरा हो। जय जी लिख रहे हैं, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म सत्या का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। मोहसिन रजा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं, प्यार भरा आदाब, ढेर सारे फ्लावर्स के साथ आपकी पसंद का सदाबहार जो नगमा है वो सुनवा दीजिए। खंडवा रोड सनावत से लिख रहे हैं शाहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर, डॉक्टर मोइन शेख। तो दोस्तों आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। और जो हमने पहला मेल पढ़ा था, जी हाँ, सतीश अनेजा जी का, उनकी फरमाइश पर प्ले कर रहे हैं ये सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, रिमझिम गिरे सावन और जो बूंदों की जो लड़ियां हैं वो तो स्टार्ट हो गई। हालांकि सावन तो अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ आपकी जो मेल्स हैं वो लगातार आती जा रही हैं। और अगली जो मेल हमें मिल रही है वो है भाई मूसा शेख की, जो लिख रहे हैं, प्यार भरा आदाब आरती दीदी, आप खैरियत से हो, दुआ में याद रखना। बिल्कुल हम खैरियत से हैं और जुड़ चुके हैं आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद। और ये इन्होंने मेल लिखा है सनावद से शेख मूसा मोहसिन, जिसमें इन्होंने फिल्म एक कली मुस्काई का जो सॉन्ग है वो पसंद किया है। और आफ्ताब अंसारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और इन्होंने लिखा है, प्यारी बहन आरती ज्योति जी को नमस्कार आदाब, आपको भी हमारी तरफ से आदाब नमस्कार। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आर्या अंसारी जुड़े हैं हमारे साथ। हरजिंदर सिंह की भी मेल जो है वो हमें प्राप्त हो रही है और इसके साथ ही अनिल मोहन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, तिल्लू नायक और मधु नायक जी की मेल। दोस्तों बड़ी ही बेहतरीन जो फिल्म है वो आप सभी लिसनर्स पसंद कर रहे हैं, अपने दिल से पसंद कर रहे हैं। और जो आपकी पसंद में से जो सॉन्ग पसंद आ रहा है उसे हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए।

दोस्तों, इसके साथ ही आपकी पसंद प्रोग्राम में गंगाधर सावंक जी की भी एक सावंकर जी की भी एक मेल प्राप्त हो रही है। लिख रहे हैं, दीदी को प्यार भरा नमस्कार। खुद गवाह फिल्म का इन्होंने गीत सुनना चाहा है। राम रतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से हैं गंगाधर सावंकर, विजय लक्ष्मी।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हैं हमारे साथ। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। और अब हमारी जो अगली मेल प्राप्त हो रही है वो है धर्मेंद्र छिपा जी की। लिख रहे आदरणीय मैडम आरती जी को हमारा हार्दिक नमस्कार। बेहतरीन प्रस्तुति के साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवा रही हैं, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। एक नजर हम पर भी जरा गौर फरमाइएगा। तो बिल्कुल हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और ये जो मेल हमें प्राप्त हो रही है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार की। और दत्तरेंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से हमें एक और मेल प्राप्त हो रही है। हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा।

अनोखे लाल वर्मा जी का इन्होंने लिखा है कि हमें कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए। और दोस्तों इसके साथ ही ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद, जिसमें आप जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। और हमारी जो अगली मेल है संजय साहू जी की हमें प्राप्त हो रही है। पोटिया कला दुर्ग से लिख रहे हैं हमें मेल सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। इन्होंने फिल्म काला पत्थर से हमें फरमाइश, इस फिल्म के गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है। तो आप सभी की फरमाइश को हम जरूर करेंगे पूरा। जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रोग्राम है आपकी पसंद।

और की मेल हमें प्राप्त हो रही है, लिख रहे हमारा नंबर कब आएगा। तो देखिए ना, आपका नंबर आ चुका है दिग्दर्शन जी और कविता गौर जी, आप हमारी प्ले लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। और दोस्तों इसके साथ ही इन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को हमारा नमस्कार, कृपया हमारी प्लेलिस्ट में से या फिर कोई सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जैन जी लिख रहे हैं खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी वीएम जैन और सरधना मेरठ से जुड़े हैं हमारे साथ। और दोस्तों अगली जो मेल हमें प्राप्त हो रही है वो है कमलकांत जी की। कमलकांत जी लिख रहे हैं ज्योति जी नमस्कार, फिल्म हीर रांझा का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। कमलकांत गुप्ता हैं, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता, समरील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता जी जुड़े हैं हमारे साथ।

और दोस्तों अगला जो हमें अगली जो मेल प्राप्त हो रही है वो है सुरेश नारंग जी की, लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड आरजी जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार और सपने सच हुए ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं, फिल्म बरसात की एक रात से। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग जी जुड़े हैं हमारे साथ। और इसके साथ ही विजय महोबिया जी की भी हमें मेल प्राप्त हुई, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू, रानू, सपना, शिवा, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू। शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया अनय अनाया फिल्म आराधना का गीत सुनना चाहते हैं। और हमें जो अगली मेल प्राप्त हो रही है वो है दोस्तों लुबना अंसारी जी की, कृष्ण की नगरी मथुरा से इन्होंने मेल हमें लिख भेजी है। सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि ने

सुप्रीम नमस्कार, ये लिख रहे हैं मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम देवी किशन, भावना मन मानस और कनिका पटेल। साथ ही उन्होंने लिखा अपनी पसंद का कोई सा भी गीत सुनवा दीजिए। तो अब बढ़ते हैं गीत की ओर, जिसमें हमने आपकी ही पसंद के गीत को शामिल किया है और ये गीत है बरसात की रात से। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद।

साथ प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद जिसमें हम शामिल कर रहे हैं आपके भेजे हुए जी हाँ मेल्स को। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय महुबिया, लिख रहे हैं तुम्हें गीतों में ढालूंगा, फिल्म सावन को आने दो इस फिल्म का सॉन्ग इन्होंने सुनना चाहा है। विजय महुबिया, कविता महुबिया, पेंटर बाबू, रामगंज खंडवा एमपी से जुड़े हैं हमारे साथ। सलाम नमस्ते, लिख रहे हैं अकरम हुसैन जी, अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से ये जुड़े हैं हमारे साथ। अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वकीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन जुड़े हैं हमारे साथ। और हमारा जो नेक्स्ट सॉन्ग है जी हाँ जिसे हम शामिल कर रहे हैं आपकी पसंद पर, वो है सावन को आने दो फिल्म से। लाल गिरी जी की जो मेल है वो भी हमें प्राप्त हो रही है, लिख रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, पेश करते जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद, लिख रहे हैं जी कोई भी सॉन्ग हमें भी सुनवा दीजिए और शामिल कीजिए हमारी मेल को जिसे हम भेज रहे हैं। लालगिरी जी आपका भी हम सहृदय धन्यवाद कर रहे हैं मेल भेजने के लिए। आप जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ, प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर।

जी हाँ दोस्तों, सावन को आने दो ये सॉन्ग सुना आपने। आप सभी की पसंद पर हमने गीत सुनाया। और अब जो हमारी अगली मेल प्राप्त हो रही है वो है मोहम्मद फारूक जी की। जी हाँ दोस्तों, ये वो सॉन्ग है जिसके लिए फरमाइश की कुदरत फिल्म के गीत की मोहम्मद फारूक शेख जी ने फरमाइश भेजने वाले हैं। गणेशपुर गंज डुंडवारा ईटा यूपी से शेख समा शमा परवीन, साहिमा फारूक सर फराज शेख।

और दोस्तों ऐसा ही जादू कर रही हैं आपकी मेल, और अगली मेल जगन्नाथ पटेल जी की हमें प्राप्त हो रही है। सप्रेम नमस्कार, लिख रहे हैं मोटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल, आपकी पसंद का लिखा है इन्होंने। कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए। और इसके साथ ही लिख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है हमारी बहन आरती ज्योति जी का, आज काफी दिनों बाद मखमली आवाज सुनने को मिल रही है, बेहद अच्छा लग रहा है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कृपया हमारी मेल को भी शामिल करें, धन्यवाद मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरों निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी जी की मेल।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने

0: आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: पहला नशा, पहला खुमार।
3: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसके लिए हमें ईमेल लिख भेजी प्रकाश बोर गांवकर जी ने, और ये लिख रहे हैं गाइड फिल्म का गीत हमें सुनवा दीजिए, सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, अंशुमन ओवी, सुभाष सदानंद और नीरज विराज जी ने हमें ये मेल लिख भेजी है। और इसके साथ ही बसंत कुमार सिन्हा जी जुड़े हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं सलाम आदाब, फिल्म अलबेला का इन्होंने गीत सुनना चाहा है। और इसके साथ ही एक गीत और इन्होंने लिखा है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा, बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बेबी अन्विका, तनुश्री। तो फिलहाल कर रहे हैं हम आपकी फरमाइश को।

आज फिर जीने की तमन्ना है और इसके बाद जो तमन्ना है हमारे लिसनर्स की उसको भी शामिल कर लेते हैं। जॉन डी कैस्ट्रो जी की जो मेल है वो हमें प्राप्त हो रही है। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ले डी कैस्ट्रो, विलिस डी कैस्ट्रो जुड़े हैं हमारे साथ। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद। किशन सबकाल जी की भी मेल हमें प्राप्त हो रही है। इन्होंने मोहब्बतें फिल्म के गीत की फरमाइश की है शास्त्री नगर बीच शहर से। किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, विशाल सबकाल। इसके साथ ही छत्रपति संभाजी नगर पार्थ रेडियो क्लब की ओर से राजेश शाबले पाटिल, रजदीप राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश जी की मेल।

जो असर है ये ऐसे ही बना रहेगा और आप जुड़े रहेंगे रेनबो कानपुर के साथ, क्योंकि हम बात करते हैं आपके दिल से जोड़ने वाली, हमारे दिल को। जी हाँ, और इसी तरह से बस जुड़े रहिए हमारे साथ रेनबो कानपुर पर और 102.2 के फ्रीक्वेंसी पर। फिलहाल मुझे यानी आरजे आरती को दीजिए अब इस प्रोग्राम आपकी पसंद से इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफर पर।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखा

दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी हुई है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जुलाई को 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 22 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के अत्याधुनिक नवीन परिसर का लोकार्पण करेंगे। यह अत्याधुनिक परिसर राज्य में क्षमता निर्माण की संस्कृति को मजबूत करेगा। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग एवं कोर्स कम्प्लीशन जैसे कार्यक्रमों को भी इससे नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही और बेहतर लोक सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह अकादमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले 9 वर्षों में वस्तु और सेवा कर यानी GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों, मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। यह 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने राष्ट्रीय कृषि नवाचार निधि योजना के तहत कृषि नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्षितिज 2.0 इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज से 21 जुलाई 2026 तक आमंत्रित किए गए हैं। चयनित स्टार्टअप्स को विशेषज्ञ मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, शोध, प्रयोगशालाओं की सुविधा, प्रोटोटाइप विकास, बौद्धिक संपदा सहायता तथा उद्योग और निवेशकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। संस्थान के निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जरूरत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: Stay tuned 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
6: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
5: और
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
5: है जगह,
4: फिर रात को फुर्सत।

हवा, यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

5:05, 7:01। वाकई मौसम बहुत सुहाना है। जरा नजर डालिए, हल्की हल्की बूंदें बारिश की, और उस पर सड़कों पर आते जाते गाड़ियों का, वाहनों का हुजूम। बड़ी आपाधापी है, मुझे जल्दी निकलना है, मुझे जल्दी पहुंचना है। लेकिन हाँ, इस आपाधापी में कहीं ना कहीं ये मौसम का जो मजा है वो अपना ही है। चलिए, इस मौसम के मजे के साथ टॉप 10 लेकर मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ।

0: कहते हैं ना कि जहां पर इरादे होते हैं वहां पर वो चीजें मिलती जरूर हैं, लेकिन उन इरादों में शिद्दत, यानी कितनी चाहत है, कितनी शिद्दत से चीजों को आप चाह रहे हैं। और यकीन जानिए, अगर जरूरत से ज्यादा शिद्दत है वो चीज मिलती जरूर है। फिलहाल मौसम की बात चल रही है और मौसम में कहीं ना कहीं हल्की हल्की बूंदें, और मैं ये कहूंगा मौसम अपने साथ कई सारी चीजें लेकर आता है। मैं तो ये कहूंगा कि जब तुम यूं मुस्कुराते हुए आते हो तो संग मौसम बाहर का लाते हो, और बाहर का मौसम ही कुछ ऐसा है और मौसम का जादू कुछ कहना चाहता है आपके रेडियो सेट पर, यानी 100.7 एफएम रेनबो पर।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned, 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
4: और लेकिन यानी जब आसमान से पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं ना, वो सिर्फ जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि हमारे दिलों की पुरानी यादों को भी भिगो देते हैं।

मिट्टी की एक सोंधी खुशबू, उसकी एक अलग सी ताजगी, ये लेकर आता है बारिश का मौसम। और फिर चारों तरफ फूलों का खिलना, चारों तरफ हरियाली, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ कहती जाती है। और मैंने पुरानी बातों की बात की तो वाकई कहीं ना कहीं पुरानी बातें बहुत कुछ

और जिस तरह मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसी तरह जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर नया मौसम हमें यह बताता है कि बीता हुआ पल लौट कर नहीं आता, इसलिए वो ये कहता है कि हमें हर पल, जो भी मौका हो, जो भी मौसम हो, खुलकर उसका आनंद लेना चाहिए। हमेशा खुशियों के साथ उसका इस्तकबाल करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
3: धड़कन लखनऊ की।

0: बारिश और प्यार का पुराना रिश्ता है। जब बूंदें गिरती ना तो दिल किसी अपने की याद से भर जाता है, उस खास इंसान के लिए जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है।
1: कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं।

और इसीलिए मैं कहता हूं कि बारिश और यादें दोनों एक जैसी हैं। रुकना चाहो तो रुकती नहीं, बस बस ये तो बहती रहती है। जमशेद हूं आपके साथ टॉप 10 में 100.7 FM रेनबो पर, जहां पर आज बारिश के यानी खूबसूरत मौसम के खूबसूरत से गीत है आपके लिए।

बारिश में यूं हाथ थाम कर चलना, ये सपना हर बार सच नहीं होता, पर जब होता है तो जिंदगी मुकम्मल सी लगती है। ऐसा ही होता है।

और बस यही बातें जो होती हैं जिंदगी में कहीं ना कहीं खूबसूरत से रंग बिखेर जाते हैं। बूंदें तो बहुत गिरती हैं आसमान से, पर तुम्हारी याद की बूंद दिल में सबसे गहरी जाती है। यादें जो कभी नहीं मिटती, यादें जो दिल को खुशगवार कर जाती हैं।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की.
4: मौसम कोई भी हो, हर मौसम में कोई ना कोई खासियत जरूर सिमटी होती है. बस उसकी जरूरत होती पहचानने की. जैसे गर्मी का मौसम लगता तो गई, लगता है मैं भाई बहुत गर्मी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही, लेकिन वो गर्मी का मौसम भी कहीं ना कहीं कई चीजों के लिए फायदेमंद होता है.

उसी तरह से बारिश का मौसम, उसी तरह से ठंड का मौसम, तो कोई भी मौसम हो वो अपने साथ कई खासियतों को समेटे होता है। तो हर मौसम का मजा लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, 5:55 हो चुके हैं, साथ में कुछ सेकंड भी हैं शामिल। प्रोग्राम टॉप 10 से लूंगा इजाजत इस वादे के साथ कि होती है मुलाकात प्रोग्राम शाम-ए-अवध में। तो आपसे यही कहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ, यानी 100.7 FM रेनबो के साथ, और चलते चलते ये गीत खास आपके लिए।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ की विकास को और गति देगा। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार 13 विभागों के समन्वय से व्यापक स्तर पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाती है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में 1 जुलाई 2026 से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी योजना को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इस योजना के तहत अब प्रदेश के पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी। साथ ही नई व्यवस्था के तहत अब राज्य में मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। इससे राज्य के लाखों ग्रामीण मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 327.40 रुपये प्रतिदिन हो गई है। प्रदेश सरकार ने बढ़ी हुई मजदूरी देने के लिए सारे प्रबंध पहले से ही कर रखे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का भी फैसला लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, जगा
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
5: धड़कन लखनऊ की।
6: और हमेशा की तरह एक बात कि जब भी किसी से कोई वादा करो तो उस वादे को पूरा जरूर करो। यकीन जानिए जब वादे टूटते हैं ना तो उसकी तकलीफ का अंदाजा या उसकी तकलीफ का एहसास उस शख्स से पूछे जिससे वादा किया गया हो। कुछ देर पहले वादा किया था, होती है मुलाकात कुछ देर के बाद, और उस वादे को पूरा करते हुए एक बार फिर मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ प्रोग्राम शाम अवध में। और यकीन जानिए ये जो मौसम की लुका छिपी है, आपाधापी है, सुबह अचानक मौसम खुशगवार हुआ, फिर धूप निकली, फिर खुशगवार हुआ, और उसके बाद फिर फाइनली टिप टिप टिप टिप जो बारिश की बूंदे हैं वो लगातार चल रही हैं। और इन मौसम की जो बूंदे हैं, इन इस मौसम की जो आपाधापी है, इनमें आपने पूरे दिन को बड़ी ही खूबसूरती के साथ गुजारा होगा, और उम्मीद यही कि आने वाला वक्त भी बखूबी खुशियों के साथ गुजारेंगे। तो चलिए कुछ बातें आज के दिन से जुड़ी हुई, क्या हुआ है खास, कौन से दिन रहे हैं आज खास, क्या क्या खासियतों को समेटे हुए, और साथ साथ क्या होने वाला है, क्या है गोल्ड का प्राइस, क्या कह रहा है सेंसेक्स, इन सारी बातों के साथ करते हैं शुरुआत प्रोग्राम शामे अवध की इस खूबसूरत सी गीत के साथ।

हो पुराना, आज का दिन भी कई खासियतें समेटे हुए हैं। आज है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। वो चिकित्सक यानी हम इस धरती पर कहें तो धरती पर मानवों का भगवान अगर किसी को कहा गया है वो चिकित्सकों को कहा गया है। कई जगहों पर उनकी जरूरत पड़ती है। और ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है अलग अलग देशों में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है, अलग अलग डेट्स पर मनाया जाता है। और भारत में चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। और खास बात यह कि इस खास दिन विधान चंद्र राय जो थे एक प्रमुख चिकित्सक भी थे और साथ साथ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और आज़ादी के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की चिकित्सा सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया था। और इसी के लिए उनकी याद में, उनकी स्मृति में चिकित्सा दिवस मनाया जाता है आज के दिन यानी 1 जुलाई को। तो चलिए, एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, इस तरह की फिल्म आई थी, याद है आपको? एक अलग सा किरदार था, अलग सा ट्रीटमेंट था मुन्ना भाई का उस फिल्म में। और उस फिल्म से गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश, ये रहा आपके रेडियो सेट पर ये गीत।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
3: धड़कन लखनऊ की।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: 6:19, 7:01। प्रोग्राम शाम-ए-वद में आज मैं यानी जमशेद हूँ आपके साथ, और एक और खासियतों से भरा हुआ डे आज मनाया जाता है, वो है वन महोत्सव। और भारत में हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में, पहले हफ्ते में आयोजित किया जाने वाला महोत्सव है, और ये महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया जाता है। सन 1960 के दशक में ये पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन बना था, यानी वनों को विनाश से बचाने और वृक्षारोपण योजना को वन महोत्सव का नाम देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे प्रोत्साहित किया जाए। और भाई कहा जाता है कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाया जाए। जब बारिश का मौसम आता है भाई, छोटा सा एक पौधा लगा दीजिए बस, और उसके बाद देखिए बारिश कैसे उस पौधे को तेजी से बढ़ाती है, तेजी से बड़ा करती है, और धीरे धीरे कुछ दिनों में एक पेड़ और आने वाले दिनों में एक बड़ा सा वृक्ष बन जाता है, है ना। तो बस कोशिश यही रहनी चाहिए, अगर हम पर्यावरण में थोड़ा सा भी अपना योगदान देंगे तो ये जो गर्मी आप झेल रहे हैं ना लगातार, इससे थोड़ी सी तो निजात पाई जा सकती है। खासकर अगर ऑक्सीजन के लेवल की बात करें तो ऑक्सीजन का लेवल लगातार बढ़ेगा अगर ढेर सारे पेड़ हैं हमारे साथ। तो एक छोटी सी कोशिश कीजिए, और कोशिश के साथ साथ गीत जरूर सुनते रहिए। ये गीत आपके लिए है।

0: मैंने कहा ना कि आज का दिन अपने अंदर कई तरह की खासियत समेटे हुए है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम लूंगा आज के दिन। 1 जुलाई साल 1938 को इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई। भारत के बेहतरीन बांसुरी वादक और कला के क्षेत्र में साल 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। एक जोड़ी बनी थी, याद है ना, शिवहरी। भारतीय बांसुरी वादन कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने। और मैं शिवहरी की जोड़ी की बात कर रहा था, तो जो शिवहरी की जोड़ी है उसमें है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ढेर सारी फिल्में थीं, चांदनी की बात करें या डर की बात करें, हमें की बात करें, सिलसिला, फासली, विजय, ये ढेर सारी फिल्में हैं। और यही कारण था कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण और साथ साथ संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे जी। और जोड़ी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, दूसरे पंडित शिवशंकर शर्मा, और उन्हीं के संगीत से रचा हुआ ये गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा।
1: मैं तेरे सामने तुझको देखूं कि प्यार करूं,

और चलिए बात कर लेते हैं सोने और चांदी के रेट क्या हैं आज के। पहले चांदी की बात करें कि पहले सोना कितना सोना है। चलिए सोने की बात कर लेते हैं, तो आज 24 कैरेट की अगर हम बात करेंगे तो 1,40,930 रुपए प्रति 10 ग्राम, ये 24 कैरेट का है। और वहीं हम अगर 22 कैरेट की बात कर रहे हैं तो 1,29,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है। और वहीं अगर हम चांदी की बात करने की कोशिश करेंगे तो चांदी 2,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम। अब अगर आपके पास कैपेसिटी है चांदी को खरीदना चाहते हैं तो चांदी ले लो भैया, और सोना लेना चाहते हैं तो सोना ले लो भैया। अब ये डिमांड जरूर पूछ लेना घर में कि क्या चाहिए। ऐसा ना हो कि घर में चाहिए चांदी तो आप सोना ले जाएं, और सोना चाहिए तो आप चांदी ले जाएं, तो बड़ी दिक्कत होती है, खासकर खाने पीने में, है ना।

अजीब बात यह है, मैंने अपने छोटे भाई को कभी देखा ही नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, शांत, सुशील, शरीर, डिसिप्लिन। पर मेरा दिल कहता है मैं उसे देखते ही पहचान लूं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण।

चले जैसे हवाएं सनन सनन, वैसे ही कुछ रफ्तार होती है सेंसेक्स की, यानी कभी अप कभी डाउन। और अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो बीएससी का सूचकांक जो है वो 76,922.64 अंक, यानी 443.97 अंकों की ऊंचाई के साथ ये आगे बढ़ा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 24,005.85 यानी 140.10 अंक की ऊंचाई इसने प्राप्त की है। तो ये तो बीएससी और निफ्टी की रही बात, लेकिन हम भी जो रफ्तार है, हवाओं की रफ्तार है, जो बारिश की अगर हौले हौले रहेगी तो ठीक है, लेकिन अगर तेज होती है तो फिर दिक्कतें होती हैं, है ना।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: छह बजकर 55 मिनट 7 महीने कुछ सेकंड्स में हूं जमशेद आपके साथ इन प्रोग्राम शाम अवध। और चलते चलते ट्रैफिक की मैं बात करूं, बड़ी कोशिश की मैंने कि ट्रैफिक का हाल आप तक पहुंचाऊं, लेकिन कई बार संपर्क किया, संपर्क हो नहीं पाया, दिक्कतें रही होंगी कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ, ट्रैफिक का हाल जो है इस वक्त का तो आप समझ सकते हैं। जब ऑफिस छूटते हैं, लोगों को घर जाने की जल्दी होती है, तो कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम होते हैं। अगर हम बात कर लें, ये आपका अपना विधानसभा वाला चौराहा जो है, उसके बाद आगे हजरतगंज चौराहा जो है, फिर आगे आप डालीगंज पुल के पास आ जाइए, आने की जाने की जल्दी, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, और ये आने जाने की जो जल्दी होती है वो जाम का कारण बनती है। तो कोशिश करें कि जो आपकी लेन है अपनी लेन में ही चलें, जिगजैग करके गाड़ी ना चलाएं।

जल्दबाजी किस काम की है साहब, अभी यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो आगे कोई और सामने आ जाएगा, फिर आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी। और ब्रेक मारने से दो तरह के नुकसान होते हैं, ब्रेक को तो दिक्कत होती है लेकिन हाँ जो फ्यूल कंजप्शन है आपका उस पर भी फर्क पड़ता है। तो कोशिश करिए आराम से गाड़ी चलाइए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए, और अगर हम बाइक पर हैं आप जा रहे हैं आसपास तो हम बाइक पर हेलमेट लगाना ना भूलें। तो ये सारी कोशिशों से हम ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बना सकते हैं। इस बात के साथ मैं लूंगा इजाजत, प्रोग्राम शाम अवध से टॉप 10 न्यूज और उसके बाद फिर होती है मेरी मुलाकात हेलो एफएम में, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम।

नमस्कार, सुनिए टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज जिन विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। केंद्र सरकार ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर करबाई खंड के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस परियोजना की अनुमानित कुल पूंजी लागत 7145 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे SIT की समय

सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले में विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए एसआईटी ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी जवाबदेह हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर से प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल चलो अभियान से बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना को आज से आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इस नई योजना के तहत अब प्रदेश के पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश में आज से वन महोत्सव की शुरुआत की गई। वन विभाग की ओर से आयोजित वन महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान विभाग की तरफ से आम बाहर आपके द्वार का आयोजन किया जाएगा। जनपद उन्नाव के बांगरमौन कोतवाली क्षेत्र में आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में बस और कार की टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 17 लोग घायल हो गए। इसी के साथ टॉप 10 समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला समाचार बुलेटिन शाम 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
6: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।
7: कोई

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
6: है, आशिकी जगा
4: फिर रात

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।
4: सात बजकर 6 मिनट 7 सेकंड्स में हूँ जमशेद आपके साथ। अपने पसंदीदा प्रोग्राम जो आपका अपना है जी हेलो एफएम, उसको लेकर एक बार फिर मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ। नंबर आपको याद होंगे 2238845 और 2238852, ये हमारे फोन नंबर, यानी 2238845 2238852। और साथ में होगा लखनऊ का कोड यानी 0522। तो बस जल्दी से हमें मिलाइए कॉल और जुड़िए हमारे साथ। और जब तक आप कॉल मिलाते हैं तब तक ये ट्रैक आप तक पहुंचाने की कोशिश

0: बस मेरा भी एक सपना है कि आपकी ढेर सारी कॉल्स हैं, मैं उन पर आपसे प्रतिक्रियाएं लूं किस बारे में आप करते हैं बात। फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ कोई है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताएं अपना।
1: नांगेश्वर ग्राम उमरी पोस्ट उमरी से बोल रहा हूँ, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा, नाम एक बार और बता दीजिए।
1: नागेश कुमार मेरा नाम है।
0: नागेश जी, कैसे हैं आप?
1: सर ठीक हैं।
0: तो आपका क्या सपना है? कोई सपना आपने देखा अभी तक कि उस सपने को देखूंगा और सपने को पूरा करूंगा? और जो सपना देखा क्या पूरा हुआ आपका?
1: सर अभी नहीं, सपने को कर रहे हैं पूरा, एसटीएजी कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो सपना क्या है आगे?
1: सर कृषि विभाग बनना है।
0: चलिए, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपका सपना जो आपने देखा है वो सपना जरूर पूरा हो। और ये जो गाना आपने सुनना चाहे किसको सुनाना चाहेंगे?
1: सर हमारे बड़े भाई को, भाभी जी को, उनकी दोनों सिस्टर जी को, चांदनी और प्रिया को।
0: चलिए, आपने कहा और ये गाना आप तक पहुंच गया।

0: हेलो हेलो। हाँ जी बताएं, कौन सा बोल रहे हैं?
1: हम संतोष बोल रहे हैं सर, कानपुर
0: संतो कहाँ से फोन किया आपने?
1: से। हाँ
0: कानपुर से। गाना आपने सुनना चाहे, बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे।
1: जी, आप तो सारे मेरे हम बोल।
0: आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं।

0: नहीं आ रही है।
1: अब सही आ रही सर?
0: कहाँ बैठे हैं
1: सर? बाहर बैठे हैं सर।
0: बाहर बैठे तो बारिश हो रही कानपुर में?
1: सर बारिश तो नहीं हो रही सर।
0: तो कैसा मौसम है कानपुर का?
1: सर मौसम तो ठंडा है सर।
0: मौसम ठंडा है यानी लखनऊ में थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं। तो क्या कानपुर
1: में का मौसम कैसा है सर?
0: लखनऊ में बहुत सुहाना मौसम, बहुत बढ़िया मौसम है और यहाँ बादल छाए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो ये गाना किसको सुनवाना चाहेंगे आप? जी संतु जी ये गाना किसको सुनवाना चाहेंगे? बंजारन रास्ता देखे
1: गाना सर सभी को सुनवाना चाहेंगे।
0: अच्छा सभी को, सभी में कौन कौन शामिल है?
1: एक तो सबसे पहले आप हैं।
0: थैंक यू।
1: और हमारे घर में सभी सभी लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग। और आपके जो आरजे हैं मोना में, मैं एक,
0: जी जी जी
1: वो बहुत दिन से नहीं आ रही है।
0: चलिए इस बारे में अगर आपको बातचीत करनी है तो हमारा जो फोन इन प्रोग्राम होता है, खतों वाला प्रोग्राम होता है, मेल वाला प्रोग्राम जो होता है उसमें बात कीजिएगा। फिलहाल आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: अब बंजारा कब आएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जरूर आ चुका है। हेलो।
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, नाम बताइए अपना।
1: सर मैं ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा भक्ति का तालाब जिला लखनऊ से सुधांशु बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: सर हम अच्छे हैं, आप बताइए सर।
0: बस बढ़िया सुधांशु, जहाँ पर आप हैं वहाँ का मौसम कैसा है?
1: सर आज अभी दोपहर में 3 बजे बारिश हुई सर, खूब तेज।
0: बहुत तेज बारिश हुई?
1: Yes,
0: तो उस बारिश से क्या फायदा हुआ? मौसम ठंडा हुआ, कुछ सुहाना हुआ?
1: यस सर, सुहाना हुआ सर।
0: और ये जो गाना आपने सुनना चाहे, किसे सुनाना चाहेंगे?
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी, 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबरई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BVG रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
4: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत

0: रामजी योजना के लिए रखी है, इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, डीबीटी, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: Stay tuned 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सात बजकर 31 मिनट 7 सेकंड्स और प्रादेशिक समाचारों से पहले हमारी बात हुई सुधांशु जी से और उन्होंने जो गाना सुनना चाहा था वो उन तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो सुधांशु जी, आपकी पसंद का गीत ये आया आपके रेडियो सेट पर। और हाँ, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बस हमारे फोन नंबर हैं, उनको मिलाइए 2238852 2238845, ये हमारे नंबर। और हाँ, इससे पहले आप लखनऊ का कोड यानी 0522 जरूर लगा लीजिएगा। तो बस सुधांशु जी, ये आया आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: और हमारे साथ कोई और फोन लाइन पर जुड़ चुका है, बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा 12
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, ठीक है।
0: तो तालिब भाई, आपने गाना सुनना चाहा है क्या? 12 में बारिश हो रही है क्या? 12 में बारिश हो रही है क्या? आवाज आपकी फिर कटने लगी।
1: हेलो,
0: हाँ बताएं।
1: बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो ये सावन का महीना आपने जो गाना सुनना चाहा है, किसे सुनाना चाहेंगे? कुछ खास वजह इसको सुनने की?
1: मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस वक्त, मतलब बादल नुमा बने हुए हैं।
0: अच्छा, तो बारिश के अंदेशा है कि बारिश होगी?
1: अंदेशा है।
0: चलिए, तो ये गीत आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये आया।

0: है क्या, बाराबंकी में बारिश हो रही है क्या? बाराबंकी में बारिश हो रही क्या? आवाज आपकी फिर कटने लगी।
1: हेलो,
0: हाँ बताएं।
1: बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, तो ये सावन का महीना आपने जो गाना सुनना चाहा है, किसे सुनाना चाहेंगे? कुछ खास वजह इसको सुनने की?
1: मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस वक्त, मतलब बादल नुमा बने हुए हैं,
0: अच्छा, तो बारिश
1: इसी वजह से
0: के
1: हम ये गीत सुनेंगे।
0: अंदेशा है कि बारिश होगी।
1: अंदेशा
0: चलिए, तो ये गीत आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये आया।

0: और हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जुड़ चुका है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी कैसे हैं? ठीक है
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं सर। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, आपसे बात हो गई और अच्छे हैं।
0: जी बहुत शुक्रिया। और ये गाना जो आपने सुनना चाहा है, खुदा गवाह मूवी का, किसे सुनाना चाहेंगे आप?
1: जी मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद तालिब अंसारी राजा कटरा से
0: जी,
1: और बबीता राव दीदी हैं, रोशनी रावत दीदी हैं, समा अंसारी हैं और साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी।
0: चलिए सभी के लिए ये गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: 7:40 साथ में कुछ सेकंड्स, मैं हूं जमशेद आपके साथ इन प्रोग्राम हेलो एफएम। और अभी ढेर सारा वक्त बाकी है, आप भी हमें मिला सकते हैं 2238852 या 2238845। और हाँ, उसके साथ लखनऊ का कोड जरूर लगाइएगा। हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जुड़ चुका है, बात करते हैं। हेलो,
1: सलाम
0: वालेकुम। सलाम, कौन बोल रहा है?
1: जी, अंसारी नेवागंज से बात कर
0: रहे
1: हैं, कैसे हैं आप?
0: जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और बताइए आप अपने बारे में।
1: हम भी बहुत अच्छे हो गए आपसे बात करके, अच्छे हो गए।
0: तो लखीमपुर का मौसम कैसा है?
1: बात हो रही है हमारी
0: जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लखीमपुर का मौसम कैसा है?
1: बहुत बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी, हम तो भीग भी गए थे।
0: तो बारिश में क्या खाने का दिल करता है?
1: बस चाय और पकौड़े।
0: चाय और पकौड़े, और पकौड़े कौन से, प्याज के या कोई भी मिल जाए? चलिए, तो अभी प्याज के पकोड़े बनाए फिर आपने? हाँ बिल्कुल, मौका मिला तो जरूर खाएंगे, कभी मौका मिला तो, है ना? तो ये गाना किसे सुनाना चाहेंगे जो आपने सुनना चाहे सावन की झुलमुल? जी शुक्रिया।
1: मोहम्मद आसिफ भाई
0: जी,
1: मोहम्मद तेज भाई, वकील अहमद भाई, सुमा परवीन आती, लक्ष्य जी की अपा, रिंकी दीदी, पिंकी दीदी, रोशनी दीदी, प्रीति दीदी, बबीता राव दीदी, नितिन कुमार भाई, राशिद अंसारी, साहिब अंसारी आती।
0: चलिए सभी के लिए गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: हेलो
1: हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं
0: सर? प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी? कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
1: जी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। उज्जैन से आपने हमें फोन किया, और
0: हाँ,
1: बताइए
0: मोबाइल
1: क्या
0: आपसे
1: हाल
0: से
1: चाल है
0: मिला हूँ
1: आपका?
0: कार्यक्रम में।
1: जी, बहुत शुक्रिया।
0: जी
1: और बताइए कुछ
0: मैं
1: अपने
0: अच्छा
1: बारे
0: हूँ,
1: में।
0: और बरसात नहीं हो रही है अभी हमारे यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं।
1: चलिए, जरूर बरसात होगी। और ये जो गीत आप सुनाना चाहते हैं, किसको सुनाएंगे आप? हाँ तू है, हाँ
0: जी
1: तू है, जन्नत मूवी का।
0: हाँ जी, जन्नत मूवी का सॉन्ग है।
1: जी
0: मिंटू तिवारी जी अभी सुन रहे हैं,
1: जी जी
0: और रामपुर से ओमकार जी हैं,
1: जी जी
0: और रामपुर में जितने भी श्रोता है ना,
1: जी जी
0: उन सभी के लिए डेडिकेट रहेगा, और जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है उनके लिए भी रहेगा डेडिकेट, और आपके लिए भी।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये रहा आपके रेडियो सेट पर ये गीत।

0: और मेरी यादों में तो बस ये है कि आप हमारे साथ जुड़े और हम आपसे करें बात, जिस तरह से फोन लाइन पर किसी ने कर दिया है हमें कॉल। हेलो।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
1: हरिकेश बोल रहे हैं सर।
0: जी हरिकेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं सर?
0: बस बढ़िया। कहाँ से फोन किया आपने?
1: मैं फोन किया, मैं कुरौनी बंथिया लखनऊ से।
0: जी, और बताइए।
1: बहुत फेमस है मैं।
0: अच्छा अच्छा, और बताइए क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है सर, अच्छे हैं।
0: काफी देर से फोन लगा रहे थे।
1: हाँ, अरे मैं तो सर 2 महीने से फोन लगा रहा हूँ।
0: अभी आपने जिस तरह से गाना आपने बताया ना, कि आपने एक मूवी का गाना बताया, तो मैंने कहा कि अभी मैंने कुछ देर पहले प्ले किया, तो मुझे लगा कि आप लगातार प्रोग्राम को सुन रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको ये ध्यान में है कि गाना भी बज चुका है। चलिए, गाना किसे सुनवाना चाहेंगे आप?
1: सर सबसे पहले तो आप ही को सुना देंगे।
0: जी बहुत शुक्रिया।
1: और मैं अपने घर वालों पे सुना देंगे, और जो है कि एक बाबू अंसारी जी हैं अहमदपुर चौकी, अहमदपुर गए थे पर फिर दोबारा गए थे, नहीं मिल पाए।
0: जी जी,
1: इसके लिए कोई बात नहीं है
0: जी।
1: ओंकार भाई साहब को सुनवा देंगे, और नवनीत हैं
0: जी जी,
1: और जो है कि तिवारी हैं, तिवारी जी हैं उन्नाव सर।
0: जी जी जी जी, चलिए सभी के लिए आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: हाँ
0: नाम
1: सर,
0: बताइए
1: बताएं।
0: अपना।
1: सर मैं जिमकेन वर्मा बोल रहा हूँ, त्रिवेदीगंज डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से।
0: कैसे हैं आप?
1: जी सर।
0: बढ़िया हैं? प्रोग्राम पूरा आपने सुन लिया? अच्छा
1: जी सर, अब प्रोग्राम को तो आपको 7 बजे से सुन रहे थे हम
0: अच्छा
1: जैसे।
0: चलिए, बहुत शुक्रिया। गाना किसे सुनाना चाहेंगे, जल्दी से बता दीजिए, वक्त बहुत कम
1: गाना
0: है।
1: सुनवाने वाले हमारे दो तीन दोस्त हैं, जैसे सागर भाई हैं त्रिवेदीगंज से, दीपू कश्यप हैं, हमारे हमारे घर में राहुल अभिया, श्यामू हैं, रामू हैं,

चलिए बहुत शुक्रिया। तो बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि फिर किसी रोज किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपसे। तब तक खुदा हाफिज, शब खैर, और हाँ अपना ख्याल जरूर रखिएगा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में प्रदेशव्यापी डिजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान आज से शुरू होकर 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डिजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प है। केंद्र सरकार ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4-6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रूपये है। मंत्री ने कहा कि यह परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा

यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का भी फैसला किया गया है। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल 2 से 4 जुलाई तक गोरखपुर लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सेवारत शिक्षकों के लिए पृथक शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें अधिक अवसर मिल सके। और प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नवनिर्मित 10 उप निबंधक कार्यालयों और अभिलेखागारों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार रजिस्ट्री कार्यालयों में आने वाले आमजन को हर अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मॉनसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा।

इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। नमस्कार, आदाब, खैर मकदम, आप सभी का आबशार में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त समरीन, और इस प्रोग्राम में आपको लेके चलेंगे एहसास और जज्बात की महक के साथ उन गजलों की दुनिया में, जहां महबूब की सूरत, उसकी खुशबू, उसकी अदा एक एहसास बनकर दिल में उतरती है। आज यहां गजलों में जिक्र होगा आपके महबूब की खूबसूरती का, बात होगी उनकी जुल्फों की छांव की, जिक्र होगा उस तड़प का जो फिराक के बाद आप महसूस करते हैं, तो वहीं नर्म लहजे की मिठास आपको आज जज्बात से शराबोर कर देगी। तो चलिए इस सिलसिले की पहली कड़ी में आपको सुनाते हैं एक ऐसी खूबसूरत गजल जो हम सब ने अपनी जिंदगी में जब बहुत जज्बाती होंगे ना तो जरूर सुनी होगी। तो पहली गजल आपके रेडियो सेट पर गुलाम अली साहब की आवाज में ये रही।

जी हाँ, जिंदगी का वो दौर जब आपने इश्क किया होता है या आप इश्क में मुब्तला होते हैं और चाहते हैं कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये जो मैं सातवें आसमान पे हूँ, मैं ऐसा हमेशा महसूस करती रहूँ या करता रहूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ आपको जिंदगी में सुख और दुख दोनों के मजे देती है। कभी कभी हम मोहब्बत का इजहार अल्फाज से नहीं करते, बस नजरें खामोशी से अपने महबूब से मिलती हैं और आंखों ही आंखों में दिल की दास्तान बयान हो जाती है। चाहे अल्फाज ना दें, लेकिन फिर भी सामने वाला समझ जाता है। शर्माना, नजरें झुका लेना या फिर चुपके से उस चेहरे को तलाशना, इश्क की ये सभी मासूम अदाएं सदियों से गजलों की रूह रही हैं। जब किसी की एक झलक से धड़कनों की रफ्तार बदल जाती है, तो शायद इसे ही मोहब्बत कहते हैं। वैसे तो लोगों ने इश्क और मोहब्बत को ना जाने किस किस तरह से बयां किया है, लेकिन अगर मेरी जबान में आसान अल्फाज में इश्क को समझा जाए तो धड़कनों की रफ्तार बदल जाने को इश्क कहते हैं जनाब। और आइए इस खूबसूरत एहसास को अल्फाज और सुरों में महसूस करते हैं। पेशी खिदमत है एक ऐसी बेहतरीन दिलनशीन गजल जिसे सुन सुनकर मैं तो बड़ी हुई हूँ, और अगर आपने भी सुनी होगी अपने वक्त में यह गजल तो आप जरूर रिलेट करेंगे। उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल आपके रेडियो सेट पर ये रहेगी।

अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें तो उनके लिए हम जिंदगानी लुटा दें, लेकिन ऐसा होता कहाँ है दोस्त। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है और हमारे इमोशंस अपनी रफ्तार से। और सबसे ज्यादा तकलीफ पता है कब होती है? जब आप इंतजार में होते हैं, मोहब्बत की वो शाम, वो लम्हे जो आपने इंतजार में गुजारे हैं, वो कभी कभी दिल में तकलीफ पैदा करते हैं तो कभी दिल को रोशन भी कर देते हैं। ये चराग रोशनी से ज्यादा एहसास इस बात का देता है कि मेरा महबूब, उसकी खुशबू, उसके आने की आहट, मानो हमें एक आस दे जाती है। और जब वो आता है और दिल में मोहब्बत का दिया जल उठता है, इश्क अपनी रोशनी बिखेर देता है, तो दिल की वीरान गलियां भी ना जगमगा उठती हैं। फिर रात सिर्फ रात नहीं रहती, बल्कि इंतजार, चाहत और खूबसूरत ख्वाबों की महफिल बन जाती है। इन्हीं नर्म रुमानी जज्बात के साथ सुनिए एक और बेहद खूबसूरत सी गजल अपनी दोस्त सबरीन के साथ। आप सुन रहे हैं इस वक्त आबशार।

जिंदगी में यूं तो बहुत सारे एहसास, जज्बात और रिश्ते ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही एहसास आप करते हैं जब आप इश्क में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं। जो इससे गुजरता है वही जानता है कि बेखुदी क्या चीज होती है, वो कैफियत जहां दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाने लगती हैं और सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती है। कहते हैं कि अगर आप होश में रहते हैं, अपने हवासों में रहते हैं, तो ये एक नेमत से कम नहीं, लेकिन मोहब्बत का अपना ही दस्तूर है। यहां हिसाब नहीं चलता, तर्क नहीं चलते, बस एहसास से काम लिया जाता है। शायद इसीलिए इश्क की दुनिया में बेखुदी को सबसे खूबसूरत मकाम पर रखा गया है। इन्हीं गहरे जज्बातों और दिल को छू लेने वाली कैफियत के साथ पेशे खिदमत है एक और बेहतरीन गजल जो आपको ले जाएगी एक अलग दुनिया में। एक बार फिर से जगजीत साहब की आवाज में ये गजल आपके रेडियो सेट पर।

दोस्तों, इंतजार की भी अपनी एक खुशबू होती है जो हवाओं में घुलकर पूरे माहौल को महका देती है। वाकई कुछ रिश्तों की पहचान उनकी मौजूदगी से नहीं होती, बल्कि उस एहसास से होती है जो उनके साथ रहकर आप महसूस करते हैं। अब आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी ही गजल जो फिजाओं में महकती है और जब कानों तक जाती है तो दिल में यकीन मानिए कि जो दिल की मिट्टी है उसको नरम कर जाती है। और इसी के साथ, इन महकते एहसासात के साथ हमें दीजिए अब इजाजत। 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है ये प्रपोजल।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटर

0: कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान

0: ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में 1 डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए

0: 24 पैसे पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

9:26 आप सुन रहे हैं पॉप टाइम अपने दोस्त सबरीन के साथ और लगातार बेहतरीन म्यूजिक को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि आपने यह नोटिस किया है कभी कि जब किसी प्रोग्राम में म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा होता है, मेहंदी या फिर कुछ गाना बजाना जैसा, तो हर एक झिझक रहा होता है, नहीं हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे माहौल बजता है, बनना शुरू होता है, अच्छे अच्छे गाने बज रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके सब खड़े होते हैं और सभी इसको इंजॉय करते हैं। इसका रीज़न ये है कि म्यूज़िक हमें कनेक्ट करता है। और एक और चीज़ है कि आप जब भी कोई फेमस गाना या पॉपुलर या हिट ट्रैक चल रहा होता है तो उसके आगे के जो गाने हैं वो आपका जहन अपने आप गुनगुनाने लगता है, आगे की म्यूज़िक पहचानने लगता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको आज ये चीज़ मैं एज अ फैक्ट बता रही हूँ। चलिए जल्दी से शामिल करते हैं इस फैक्ट के अलावा जो

ढेर सारे मेल्स इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी। वकील अहमद जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं। अब मुद्दे पे आते हैं, इन सबके नाम ले लीजिए। वकील अहमद मंसूरी, कटका, हतूरी, जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी और एमन नवाब, आप सबको इन्होंने डेडिकेट किए हैं। जो अगला गाना बजाएंगे हम वो, तालिब अंसारी लिखते हैं, मौसम लाजवाब और प्रोग्राम लाजवाब, सब एवरग्रीन है इस वक्त। सुधांशु लिखते हैं, राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महोना इटौंजा बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, आज बारिश हुई है भगवतीपुर में, मैंने खूब नहाया अपनी छत पर जाकर, खूब मजा आया। हिमांशु, पापा मम्मी सभी लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, सिंहपुर सिंधौली से पवन जी भी कार्यक्रम सुन रहे हैं। अरे वाह, ग्रेट। तो ये आप कहाँ से सुन रहे हैं वो आपको पता है, और कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है उसका भी पता है, क्या बात है। मोहम्मद साबिर अंसारी लिखते हैं, प्रोग्राम मस्त लग रहा है, आज समरीन जी कानपुर से लाइव सुन रहा हूँ, मेरे दोनों भाइयों के नाम जरूर ले लीजिएगा, आसिफ अंसारी हैदराबाद से और तालिब अंसारी राजा कटरा से। तो ये राजा कटरा कहाँ पर है। विनीत कुमार लिखते हैं, विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, पॉप टाइम प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली बहन जी को गुड इवनिंग, शुभ रात्रि का सादर प्रणाम आपका छोटा भाई की तरफ से और मेरी रूमी गौतम वाइफ की तरफ से, प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। और मैंने बहुत दिल से आपका नमस्कार और आपकी जो वाइफ है रूमी गौतम उनका भी नमस्कार दिल से स्वीकार किया है। लिखते हैं, बहन जी आपकी बोली, आपका अंदाज सुपरहिट लगता है, प्रोग्राम अच्छा कर रही है, कृपया भोजपुरी गाने जरूर बजा दीजिए। आगे लिखते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं उनके नाम ले लीजिए, ओमकार अतरौली सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत और उनके हस्बैंड राम सेवक लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, संजय अतरौली से, ममता हरदोई से, वीरपाल पट्टी अतरौली से, रिंकी पिंकी रायबरेली से और मोहनी हरदोई से। मोहम्मद माज लिखते हैं, मोहम्मद माज अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, जरीना मैम प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप थोड़ा जल्दी आया करो, मेरा दोस्त आसिफ भी प्रोग्राम सुन रहा है। तो जरीना नहीं, मेरा नाम समरीन है, आप शायद कंफ्यूज हुए हैं। और हमारी बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी लिसनर एमन लिखती है, हेलो डियर समरीन अपी, कैसी हैं आप, बहुत दिनों बाद आपको हमारी याद आई, हम तो रोज आपको याद करते हैं पर आप नहीं याद करती हैं, वैसे तो मुझे कोई भी नहीं याद करता। अच्छा, ये इतने इमोशनल ब्लैकमेल क्यों शुरू हो जाते हैं अमन, आप मुझे याद किया करो प्लीज, मैं जरूर आपको याद करती हूँ और अक्सर मैं आपको मैसेज भी रिप्लाई देती हूँ। और आगे लिखती हैं, आप मुझे याद करिए करा करिए प्लीज, मुझे हिचकी आएंगी, मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे याद किया, गाने आपके बहुत अच्छे लगते हैं, आपके उर्दू के अल्फाज बहुत अच्छे लगते हैं, रजनीगंधा में भी आपके साथ बने रहेंगे, लॉट्स ऑफ लव। और यकीन मानिए ये चार घंटे आपके इस मोहब्बत के साथ, अटैचमेंट के साथ कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। आगे मोहम्मद आसिफ लिखते हैं कि अच्छा, इन्होंने फिर जरीना का जिक्र किया है। समरीन हूँ मैं इस वक्त आसिफ जी, और लिखते हैं, जरीना मैम आप हेलो एफएम में क्यों नहीं आती हो बताओ, सब में सब मैम उम्मीद से अच्छी होंगी आप, आपका आबशार बहुत ही लाजवाब लगा, कहता हूँ जिसका दिल टूटा हो वो आबशार जरूर सुने और रजनीगंधा भी सुने। जी अगर आप इश्क और मोहब्बत में मुब्तला हैं तो भी सुने, आप एंजॉय करेंगे। आगे यासिर हमीद अंसारी फॉर मियांगंज उन्नाव से लिखते हैं, हेलो डियर समरीन नपी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यासिर, आप कैसे हैं। समरीन अपी, आपका नाम का जो तलफ्फुज़ है वो बहुत ही उम्दा है, दिल से सलाम। एक शायरी मैं सोच रही थी आज कोई शायर नहीं दाखिल हुआ मेल बॉक्स में हमारे, तो लिखते हैं यासिर जी कि होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए कल वो गुजरे जमाने नहीं आते, दोस्त होते हैं दोस्त के ही हम दर्द, यहाँ फरिश्ते किसी का साथ निभाने नहीं आते। वाह, एक दोस्त का नाम लेना चाहूंगा, आयुषी मौर्य जी औरस उन्नाव से हैं और ये यासिर अहमद अंसारी मियांगंज जिला उन्नाव से, इन्होंने हमें ये मेल भेजा है। बबीता जी ने बहुत प्यारा सा मेल भेजा है, कलरफुल है, फ्लावर्स है इसमें।

चाय भी है और स्माइली भी है जिसमें तीन दिल बने हुए हैं. तो लिखती है मेरी क्यूटी समरीन मैम जी को प्यार भरा सलाम अर्ज है. एड्रेस बेलीकला गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ से. मैम जी हम आपको हमें आपका गजलों का आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा. एकदम सुपर डुपर और पॉप टाइम भी मस्त लग रहा है. आपके आने की जब खबर महके आपकी खुशबू से सारा स्टूडियो महके और हम लिसनर्स का दिल चहके. वाह वाह बबीता आपने मेरा मूड बहुत अपलिफ्ट कर दिया. वैसे म्यूजिक से तो अपलिफ्ट हो ही रहा है बट इतने प्यार भरे मेल्स मिलेंगे तो किसका मूड नहीं अच्छा होगा. आगे लिखती हैं मैम जी हमें आपके प्रोग्राम करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है और आपकी वॉइस तो आए हाय. आपका प्रोग्राम रोशनी रावत जी महेंद्र भाई आसिफ भाई ब्रजेंद्र सिंह दीपू भाई गुलफशा दी एमन दी एमन नवाब नीलू दी शाजिया जी साहिबा जी हम सब लोग बड़ी ही शिद्दत से सुन रहे हैं और आपकी उम्दा प्रस्तुति को इंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच समरीन जी फॉर रीडिंग माई मेल. शुक्रिया बबीता. और इसके साथ अब हमें चाहिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद शामिल करेंगे ये बचे हुए जो मेल्स हमारे पास हैं या जो लगातार मेल्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में आ रहे हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक बार मैं फिर से बता दूं एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप मेल करके हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं.

दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी जो है महसूस कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आपके जहन में डोपामिन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, या आपको ना सिर्फ म्यूज़िक से बल्कि स्क्रीन से भी रिलीज़ होता है। लेकिन आप जब अच्छे म्यूज़िक से आपका डोपामिन रिलीज़ होता है तो वो एक्सेसिव नहीं होता है, और आपका ये जो अच्छा फील करने वाला चीज़ है ना, वो आपके लिए उतनी नुकसानदेह नहीं होगी। बट अगर स्क्रीन से आपको ये रिलीज़ हो रहा है, तो आप सोचें कि आपकी आंखों पर और जहन पर स्ट्रेस भी रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो आप रिलैक्स और बेहतर फील करते हैं, लेकिन जब आप कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरीज़ देखते हैं तो आपके जहन पर एक भारीपन रहता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट आपकी आंखें स्ट्रेस में होती हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अपने लिसनर्स की तरफ, जो लगातार मेल्स जो है वो हमें भेजते जा रहे हैं। जल्दी से शामिल कर लेते हैं मेल्स, क्योंकि वक्त कम बचा है। रोशनी रावत लिखती हैं, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड समरीन दी, कैसी हैं आप? जब दीदी दुआ में आपको मांगा है तो किसी और का ख्याल ही क्यों करना, और मुझे चाहिए ही नहीं, आपकी दुआ से सब कुछ है। हाउ स्वीट, और आप ऐसी भरी पूरी और संपन्न रहें, ये मेरे दिल से आपके लिए दुआ है। और आगे लिखते हैं कि बहुत दिन लगा दिए आने में, मत पूछिए कितना इंतजार किया, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कहाँ से लाएं वो शब्द आपकी तारीफ में, पूरी कायनात में वो शब्द ही नहीं मिले जिससे बयां कर सकूं अल्फाज से आपकी तारीफ। प्रोग्राम बहुत बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एक शब्द में लाजवाब, पॉप टाइम का ही नहीं, ये जलवा आपका है दीदी, तहलका मचा दिया। अच्छा, हाउ स्वीट, मतलब मुझे शायद ही बाहर इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हो जितने आप लोग देते हो। और इन्होंने एक शेर भी अर्ज किया है, लिखती हैं, अर्ज किया है कि आपकी आंखों में कभी कोई उदासी ना आए, जिस दुआ में आपकी खुशी ना हो वो लफ्ज होठों पे ना आए। और आगे बहुत प्यार से रोशनी ने लिखा है कि रजनीगंधा में भी साथ रहेंगे, और मैं तो दुआ करती हूँ कि हम हमेशा हमेशा साथ रहें, रेडियो के उस तरफ आप और रेडियो के इस तरफ हम। जीशान खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सरवीन अपी, मैं जीशान खान संडीला से, मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इस वक्त टाइम मिलता है तो सुन लेता हूँ। मेरी वाइफ गुलफशा सिद्दीकी, मेरी बेटी नूर अक्सा, और मेरे बेटे हसन खान और जिया खान। कोमल तिवारी लिखती हैं, गुड इवनिंग समरिंदी, कैसी हैं आप? आज प्रोग्राम में बहुत दिनों बाद आए हैं आप, गाने आप बहुत प्यारे बजा रही हैं, प्रोग्राम में जान डाल देती हैं आप, ये सभी गाने आप दिल को छू लेने वाले प्ले कर रही हैं। कोमल तिवारी, कैसरगंज बहराइच, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि आपको गाने पसंद आ रहे हैं। आगे रविकांत जायसवाल जी लिखते हैं, दिल्ली परिवहन विभाग DTC से एकदम गर्दा उड़ा रखा है। शुक्रिया रवि। प्रिंसी लिखते हैं, विजयलक्ष्मी कुशवाहा संडी जनपद हरदोई, आज मेरी भाभी प्रिंसी जी की शादी की वर्षगांठ है और 3 जुलाई को मेरी सगाई है, बहुत दिनों बाद मेल कर रही हूँ। हेलो मैम, कैसी हैं आप? समरीन जी, अभी आपको याद किया था और आप आ गई। प्रिंसी, बहुत बहुत मुबारक हो, आप जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रही हैं, इस सफर आपके लिए बहुत हसीन, बहुत प्यारा और बहुत आसान हो, मेरे तो दिल से दुआ है आपके लिए प्रिंसी। और गुलफशा जी लिखती हैं, समरीन अप्पी, मैं क्या बताऊं आपको कि मैं कितनी खुश हूं आपको सुनकर, आप मेल पढ़ रही हैं और मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही हूं आपकी आवाज, जब आपकी याद आएगी तो सुनूंगी। और गुलफशा, मैं इतनी इमोशनल भी हो जाती हूं कभी कभी आप लोगों के मेल से, कैसे मतलब ये कौन सा प्यार है जहां हम मिले नहीं हैं, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन जब मेल्स के जरिए आप लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा और स्पेशल फील होता है कि हाँ, हमारा ये जो कम्युनिटी क्रिएट हुई है रेडियो की, ये जो हमारे लिसनर्स हैं, इनकी जो मोहब्बत है वो हमारे साथ ऐसी ही है जैसे शायद बाहर हमारे जो दोस्त हैं somehow ऐसा फील करते हैं हम उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना मैं इमोशनल जाऊंगी। अभय सिंह लिखते हैं, हेलो समरीन मैडम, मैं अभय हरिकंश गढ़ी मोहनलालगंज लखनऊ से पॉप सॉन्ग कार्यक्रम सुन रहा हूं, और मैं ही नहीं सुन रहा बल्कि मेरे साथ मेरी माँ सुशीला देवी, पत्नी रिंकू देवी और बेटा राज सिंह भी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। माता जी का घुटने का ऑपरेशन हुआ है, उनकी देखभाल करते हुए FM सुनते रहते हैं। अभय जी, माता जी जल्दी से सेहतयाब हो जाएं और आप ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश सिंह लिखते हैं, गुड इवनिंग समरीन जी, हमारे सभी श्रोता मित्र एक साथ मिलकर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। विकास सफीपुर उन्नाव से, रोशनी चंडीगढ़ से, महेंद्र दीपन गुजरात से, बबीता जी लखनऊ से। वारिस अली खान लिखते हैं, आपकी क्या लिखा है उन्होंने, कि आवाज की दुनिया के प्यारे

और देखते ही देखते 9:42 हो चुके हैं। थोड़ा ही वक्त और हमारे पास बचा है पॉप टाइम में, लेकिन एक और म्यूजिकल फैक्ट आपको बताती हूँ, और वो ये है कि जब भी हम कोई अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं, वैसे तो हम दिन भर कुछ ना कुछ सुना करते हैं, लेकिन जब अपना फेवरेट अचानक से कोई गाना प्ले हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है, तो हमारे जहन में एक केमिकल का सिक्रीशन होता है और वो होता है डोपामिन। जी हाँ, जिससे आपको फील गुड फैक्टर जो है ना, और इसे डोपामिन को एक फील गुड वाला केमिकल भी कहा जाता है, ये आपको

दोस्त समरीन को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। अर्ज है, दीदार ना सही याद तो कर लिया करो, मैंने कब कहा कि हिचकियों से परहेज है। आप शो बहुत अच्छा कर रही हैं, पॉप टाइम हमारा फेवरेट शो में से एक है। शुक्रिया वारिस अली खान जी। और एमन ने कुछ जवाब दिया है, जब तुम पास होते हो तब दिल चाहता है कि वक्त रुक जाए, हाउ स्वीट। तो फिर आप ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि वक्त रुक जाए, पर ऐसी ख्वाहिश करना जो है वो मुमकिन है, वो कर सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वैभव लिखते हैं, झक्कास बारिश में रेनबो का साथ, मजा आ गया, थैंक्स रिगार्ड वैभव प्रकाश सिंह। राजेश कुमार लिखते हैं, कॉपी खाली क्यों है, स्टूडेंट खामोशियां ही बेहतर हैं, शब्द से लोग रूठ जाते हैं। अरे अच्छी वाणी बोलिए क्यों रूठाना किसी को। आनंद तिवारी लिखते हैं, चुप जाती है बातें तो कभी लहजे मार जाते हैं, ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हम अपनों से हार जाते हैं। आनंद तिवारी, दारू कोइया मल्लावा हरदोई यूपी, जबरदस्त प्रोग्राम, शुक्रिया आनंद। और ये इतनी हैवी हैवी सी बात क्यों की आपने। कुलदीप मौर्य लिखते हैं, धनीपुर मितौली लखीमपुर खीरी से राधे राधे। इन सभी लोगों के नाम ले लीजिए, कुलदीप मौर्य, पूनम मौर्य, मनोज मौर्य, प्रतीक मौर्य, कुणाल मौर्य, पूर्वी मौर्य, आरुषि मौर्य। छोटा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, छोटी प्रोग्राम, अच्छा मौर्य, छोटी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैं अभी भी नहीं समझ पाई इन्होंने छोटी किसी को एड्रेस किया है। अरविंद कुमार दुबे लिखते हैं, नमस्ते एफएम रेनबो लखनऊ, गर्मी की छुट्टी भाई बहन और मम्मी के साथ बिताकर अब गढ़वा झारखंड से कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूँ, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। दीपा तन्वी तिवारी, प्रतिमा प्रतिष्ठा, श्याम कुमारी, गोविंद, अरविंद दुबे, धर्मदेवा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया था। और अब हम लेंगे एक छोटा सा और प्यारा सा, थोड़ा सा लंबा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद जो बचे हुए मेल्स हैं उनको हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके रेडियो सेट पर आया ये गाना।

और देखते ही देखते अब हमें इस प्रोग्राम से लेना होगा आपसे इजाजत विदा, लेकिन रोशनी रावत ने हमें एक मेल भेजा है और लिखती हैं, दीदी हमारे भाई का नाम जरूर ले लीजिएगा, बबीता राव जी, नीलू दीदी, गुलफशा से दीदी, शमा परवीन, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, यासिर भैया, महेंद्र भैया, आसिफ भैया, तालिब भैया, ब्रजेश भैया, प्रमुख भैया, और हम सब एक साथ मिलकर सुन रहे हैं, सबको दूर से, सबने दूर से सलाम भेजा है। और एक लास्ट, ट्रैवल कर रहा हूँ समरीन नाम जी, आपका प्रोग्राम सुनना बहुत बिंदास लग रहा है। ओके शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं जैसे ही वाइंड अप करती हूँ एक और मेल आ जाता है, मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर, हरोवा जिला, लखीमपुर खीरी से, आज लेट हो गए हैं, आरजे जी को शुभ रात्रि। और आरजे जी आपकी आवाज में ऊर्जा और मिठास है, वो सुनते ही रात का सारी जो दिन भर की थकान थी वो दूर हो गई है। पॉप टाइम के गानों के बीच आपके अंदाज में जो आप बात करते हो वो सच में दिल छू लेती हैं। कहना बस दो लाइन में ये चाहता हूँ, ना घमंड करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। आपकी बातों और गानों से रात और भी ज्यादा हसीन हो गई है, और ऐसे ही श्रोताओं का मन बहलाते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब लेती हूँ मैं इजाजत। वारिस साहब लिखते हैं, मैं इस गीत के बारे में सोच रहा था, कल हॉटमेल में इस गाने की फरमाइश करूंगा, लेकिन आपने मेरी फरमाइश पहले ही पूरी कर दी, सो थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इस प्रोग्राम में जितने भी लोग मेल्स के जरिए कनेक्ट हुए, मेल्स नहीं भेज पाए, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। अब हम लेते हैं इस प्रोग्राम से आपसे इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि 10 से 12 रजनीगंधा में आप और हम रहने वाले हैं साथ।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। आगामी 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर आज लखनऊ में जिलाधिकारी विशाख जी और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार द्वारा समस्त केंद्र व्यवस्थापकों, नोडल अधिकारियों, सेक्टर एवं स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेटों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुछ 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 और 3 जुलाई को परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जबकि 4 जुलाई को परीक्षा केवल प्रथम पाली में आयोजित होगी। स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने आज वाराणसी स्थित एनआईसी केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न 10 जनपदों में लगभग 23.98 करोड़ रूपये की लागत से निबंधन कार्यालय भवनों के विस्तारीकरण एवं नवीन भवन निर्माण कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान श्री जायसवाल ने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। अमेठी में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ आज जिला संयुक्त चिकित्सालय गौरीगंज परिसर से किया गया। अभियान के तहत 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान संचालित किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का दायरा और बढ़ गया है। आज से इंडिगो एयरलाइंस ने 11 नए शहरों के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। इनमें नवी मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, भोपाल, देहरादून, पंतनगर, धर्मशाला, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ और बरेली भी शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, आदाब। रजनीगंधा सुनने वाले सभी लिसनर्स का मैं समरीन तहे दिल से एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे मोहब्बत के एक ऐसे सफर में जहाँ मंजिल से ज्यादा हसीन आपका सफर होगा, जहाँ वादे सिर्फ अल्फाज तक लिमिटेड या सीमित नहीं रह जाएंगे बल्कि दिल की पनाह बन जाएंगे, जहाँ यकीन एक चाहत में तब्दील हो जाएगा जो वक्त और दूरियों से भी कम नहीं होगा। इन सभी एहसास और जज्बात को आप महसूस करेंगे हमारे साथ कार्यक्रम रजनी गंधा में।

साथ हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हमारे साथ गुजरा था। और यही एहसास आप महसूस करेंगे हमारे अगले गीत में, जहां दर्द भी है, अपनापन भी है और जिंदगी को समझने की एक खामोश सी कोशिश है। आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाला ये सदाबहार गीत।

कभी गुजरी जिंदगी की यादें इतनी तल्ख होती हैं कि वो ताउम्र आपका पीछा करती हैं। ये गम आप में इस तरह से रच बस जाता है कि हर सांस और हर धड़कन में आप इसे महसूस करते हैं। इस पर एक गजल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, बल्कि गजल का एक अशार है जिसमें है कि ये मेरी गजलें, ये मेरी नज़में तमाम तेरी हिकायतें हैं, ये तस्करे तेरे लुत्फ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं। मतलब एक इंसान आपकी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट, ख़ास हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द रहती है, और उस इंसान का आपकी ज़िंदगी में होना या ना होना, दोनों सिचुएशन आपका मुस्तकबिल तय करती हैं कि आप किस रुख पे जाएंगे, आपके जज्बात, आपके एहसासात। और ऐसा ही कुछ आपको सुनने को मिलेगा हमारे अगले गीत में। मेरा साया फिल्म से आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

10:38 आप हैं इस वक्त अपने दोस्त समरीन के साथ और प्रोग्राम चल रहा है रजनी गंधा। दोस्तों, मोहब्बत कभी जंजीर बनकर बांध लेती है तो कभी आपको परवाज देती है, कभी दिल की गहराई का एहसास कराती है तो कभी साहिल पर तन्हा भी छोड़ देती है, कभी अधूरी ख्वाहिशों का कारवा बनकर दिल के वीरानों में भटकती है तो कभी दुआओं की लकीरों में किसी नाम की तरह बस जाती है, तो कभी बरसती है भीगी पलकों से आंसू बनकर।

माजी की यादों को हम कितना भी भुलाना चाहें, लेकिन उनका खामोश एहसास साथ साथ चलता है। कभी कोई अधूरी दुआ बनकर, कभी कोई खुशबू में बसा खत बनकर, तो कभी कोई भूला बिसरा नगमा बनकर।